وشاء

0: क्योंकि मदवा पिलाने वाले भी पंजतन पाक ही हैं।
1: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
2: Michael Habib, Rishta Bharose Ka.
3: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.

मजबूत पॉलिसी तहत खेल कदमन के तसलसल पाकिस्तान की मुआशी बहाली के न रुगो सहारो दिनों पर मईशत के परदेही झटकन का मुकाबला मजामत पे मजबूत किया। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड IMF पाकिस्तान लाए तोसी फंड सहूलत तहत टे जायजे लचक पायदारी की बे जायजे की रिपोर्ट जारी कर छी। रिपोर्ट में चयो है तो माली साल 2024 के पेरे में छमाही में GDP की शरह में इजाफो करंट अकाउंट मजमू तौर से बराबर ए महंगाई काबू में रही परदेही नाणे के मटा सटा वाले नाणे के बहाली अगौणन अंदाजन का बेहतर रही। IMF रिपोर्ट में विचोबर में जंग के असर बाबत पाकिस्तान के मुख्तसर वक्त लाए मुआशी मुंतजर नामे के गैर यकीनी बनाए छो है वो वाजे ना है पाकिस्तानी मीशत जो हालतू कड़ी पॉलिसी वेंद बुनियादी मंजरनामे तहत खचो है तो ईरान जंग सबब महंगाई अंदी है। ईरान जंग पाकिस्तान में मुआशी शरह में इजाफे अदायगन के तवाजुन के भी मुतासर कंदी। एटमी असासा अग्राई लाए न पर मुल्क के दिफा लाए न अकवारी जंग में दुश्मन पाक फौज सिखारियल सबक समूरी जमार याद रखो। काबिना इजलास के खिताब कंदे वजीर आजम शहबाज शरीफ चो तो शहीद जुल्फकार भुट्टो एटमी प्रोग्राम शुरू किया नवाज शरीफ मुकम्मल किया। दुनिया पाकिस्तान के जिम्मेवार एटमी ताकत तौर सुे थी। हुकूमत आवाम के रिलीफ फराहम करने ला समूरा वसीला कदम आने रही है। अकवारी जंग में कामयाबी जो दिहाड़ो भरपूर जोश ए जज्बे से मल्हायो वो। सहकार में फायदों ए शिकताण से नुकसान थन्दो है। चीनी सदर शी जिनपिंग अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुखालिफ बदरां बहिवार थियण जो मशवरो दई छो। सदर ट्रंप के डिनल आजाण के खिताब कंदे चीनी सदर चो तो अमेरिका ए चीन जो तालुक दुनिया में सभी का आम है। बई मुल्क गजी तरक्की कर सकन था। अमेरिका के बीहर अजीम प्राण चीन की तरक्की से भेट रखे तो। अमेरिकी सदर ट्रंप चो तो चीन हाँ अमेरिका के हथियार फराहम न कंदो। चीनी सदर चो तो वो आमना हुर्मुज के खुलियल दिसण चाहे तो आबना हुर्मुज में गुजरंदड़ जहाजन का टूल टैक्स के उगाड़ी खिलाफ है। चीनी सदर आबना हुर्मुज खुलण लाए मदद की भी आश कई है। सदर ट्रंप आबना हुर्मुज ए ईरान बाबत चीनी सदर से गालबोल कई है। चीन भी आबना हुर्मुज के मुकम्मल तौर ए बिना रंडक के बहाली चाहे तो। अमरीकी परदेही वजीर मार्क रोबियो चो है तो ईरान वाले मामले से गाल में अगबराई थी रही है। चीनी सदर सा भी सदर ट्रंप के ईरान के मामले से तफसीली गालबोल थी है। ईरान में असो मकसद पूरो ना थो। ईरान से बीहर जल्द हमलो कर सकूं था। इसराइल के दिफा वाले वजीर इसराइल कार्ड्स चो है तो ईरान खिलाफ घुर्बल मकसद हासिल न थे तो बीहर हमलो कंदी जै लाए तैयारी कर वरती है। हमलो जल्द भी थी सके तो। ईरान के केर भी शिकस्त नथो जी सके तो ईरान आजादी के दिफा लाए मुकम्मल ताकत से वेहण लाए तैयार है। नई दिल्ली में बर्क्स परदेही वजीर के इजलास के खिताब कंदे ईरानी परदेही वजीर अब्बास राखी चो है तो बिन साल दौरान ईरान के अमरीका ए इसराइल के बिन वहशियन हमलन के मुंह देणो पे है। UAE भी ईरान के हमले में सीधी रीत मुलस हो। ईरानी कौम कें धमकी या दबा आडो न चुकंदी मोहब्बत जो जवाब भी मोहब्बत से दी। पाकिस्तान मकामी तौर से तैयार कल फतह चार क्रूज मिसाइल जो कामयाब तजुर्बो कर वरतो। ISPR मुजिब फतह चार क्रूज मिसाइल जो कामयाब तरबियती तजुर्बो आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड के इंतजाम हेठ के वो। ग्राउंड लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल जदीद नेविगेशनल निजाम से जुड़े की सलाहियत रखे तो। सदर आसिफ जरदारी वजीर आजम शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर ए गर वजीर मोहसिन नकवी पारा कामयाब तजुर्बे की सराह साइंसदान ए कौम के वाधायो। पीपल्स पार्टी के मदद का सवाय आईनी तरमीम ए बजट पास नथी थी सके। 28 तरमीम बाबत हुकूमत अजा तई राबो ना क्यों सुबाने की खबर ना फिलहाल तबसरो नथो कर सका। KT न्यूज के रिपोर्टर अफसर शर के सवाल जो जवाब डींदे पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी चो है तो को भी पार्लियामेंटन पार्टी सरबराह की मर्जी का सवाय वोट नथो कर सके। आईन पार्टी सरबराह के इन हवाले से घणो बाख्तियार किया पार्लियामेंटेंस की रुकनियत भी खत्म थी सके थी। सूबन के तरमीम जरिए हक आला अदालत में नुमाइंदगी दियारी है। दुनिया के अमुल लाए वजीर आजम ए फील्ड मार्शल घनी मेहनत कर रहा है। मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत तनकीद कर मुनासिब ना है। मुल्क मुश्किलातों के मुंह ही रो है। बजट में भी आवाम लाए मुश्किलातों थी सकन थी। हुकूमत सूरत हाल के दिसंदे फैसला कंदी।
मीडिया से गालबोल दौरान गलायण थे बिलाल भुट्टो जरदारी पारा शाहजहां बरी थे कावड जो इजहार गलायण का वे रोके छो वीआईएसपी बाबत केटीएन न्यूज के सवाल थे बिलाल भुट्टो जरदारी जवाब दे रहे हो तो शाहजहां बरी जवाब दीदे चो तो कैलदास कोहिस्तानी अड़ी गाल की है बिलाल भुट्टो जरदारी विच में गालायण थे शाहजहां बरी

हाणे हैरत अंगेज़ ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देरि छो। अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरनि मशहूरु व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरार होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मादो ऐं जिगर गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ जुकाम दिल जी तकलीफ़ अध मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देरि सां हलणु शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी वबादी बवासीर उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो मुकमल इलाज कयो वेंदो आहे। होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं बरोज़ जुमो मोकल आहे। एड्रेस सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक शेरवानी कीरिया मेहरापुर रोड सकरन। वधीक मशोरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763। मुल्क में गर्मी की शदीद लहर जारी है जेका सेहत लाइ खतरनाक थी सके थी। मेहरबानी करे एहतियाती उपाव वठो। बिना जरूरत जे घर खां बाहर न निकरो। बाहर निकरण वक्त कंध ऐं जिस्म खे ढकियो। घणो पाणी वापराइण जी आदत ठाहियो। ORS या निमकोल इस्तेमाल करियो। हल्का ढिलो ऐं हल्के रंगन वारो लिबास पाइण खे तरजीह ॾियो। ही पैगाम मुस्लिम हैंड्स NDO ऐं स्टार नेटवर्क जे तआवुन सां अवाम जे आगाही लाइ पेश कयो वियो।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क।

0: का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: मजबूत पॉलिसी तहत खेल कदम के तसलसल पाकिस्तान की मुआशी बहाली के न रुगो सहारो दिनों पर मीशत के परदेही झटकन का मुकाबला मजामत भी मजबूत किया। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड IMF पाकिस्तान लाए तोसी फंड सहूलत तहत टे जायजे लचक ए पायदारी की बे जायजे की रिपोर्ट जारी कर छी। रिपोर्ट में है तो माली साल 2024 के पहरे में छमाही में GDP की शरह में इजाफो करंट अकाउंट मजमू तौर से बराबर ए महंगाई काबू में रही परदेही नाणे के मटा सटा वे नाणे के बहाली अगौण अंदाजन का बेहतर रही। IMF रिपोर्ट में विचोबर में जंग के असर बाबत पाकिस्तान के मुख्तसर वक्त लाए मुआशी मुंतजर नामे के गैर यकीनी बनाए छो है। वो वाजे न पाकिस्तानी मीशत जो हालतू कड़ी पॉलिसी वेंदी बुनियादी मंजरनामे तहत खचो है तो ईरान जंग सबब महंगाई अंदी ईरान जंग पाकिस्तान में मुआशी शरह में इजाफे अदायगन के तवाजुन के भी मुतासर कंदी। एटमी असासा अग्राई लाए न पर मुल्क के दिफाव लाए न अकवारी जंग में दुश्मन पाक फौज सिखारियल सबक समूरी जमार याद रखो। काबिना इजलास के खिताब कंदे वजीर आजम शहबाज शरीफ चो तो शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो एटमी प्रोग्राम शुरू किया नवाज शरीफ मुकम्मल किया। दुनिया पाकिस्तान के जिम्मेवार एटमी ताकत तौर सुे थी। हुकूमत आवाम के रिलीफ फराहम कर समूरा वसीला कदम आने रही है। अकवारी जंग में कामयाबी जो दिहाड़ो भरपूर जोश ए जज्बे से मल्हाए वो। सहकार में फायदों ए शिकताण से नुकसान थन्द है। चीनी सदर शी जिनपिंग अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुखालिफ बदर बहिवार थे मशवरो दी छो। सदर ट्रंप के डिनल आजान के खिताब कदे चीनी सदर चो तो अमरीका ए चीन जो तालुक दुनिया में सभी का अहम है। बई मुल्क गजी तरक्की कर सकता अमरीका के बीहर अजीम ब्रांड चीन की तरक्की से भेट रखे तो। अमरीकी सदर ट्रंप चो तो चीन हाँ अमरीका के हथियार फराहम न कद। चीनी सदर चो तो वो आमना हुर्मुज के खुलियल दिसण चाहे तो आबना हुर्मुज में गुजरंदड़ जहाजन का टूल टैक्स के उगाड़ी खिलाफ है। चीनी सदर आबना हुर्मुज खुलण लाए मदद की भी आश कई है। सदर ट्रंप आबना हुर्मुज ए ईरान बाबत चीनी सदर से गाल बोल कई है। चीन भी आबना हुर्मुज के मुकम्मल तौर ए बिना रंडक के बहाली चाहे तो। अमरीकी परदेही वजीर मार्को रूबियो चो है तो ईरान वे मामले से गाल में अकबराई थी रही है। चीनी सदर सा भी सदर ट्रंप के ईरान के मामले से तफसीली गाल बोल थी है। ईरान में असो मकसद पूरो ना थो ईरान से बीहर जल्द हमलो कर सकूं था। इसराइल के दिफा वजीर इसराइल कार्ड्स चो है तो ईरान खिलाफ घुर्बल मकसद हासिल न थे तो बीहर हमलो कंदी जै लाए तैयारी कर वरती है। हमलो जल्द भी थी सके तो। ईरान के केर भी शिकस्त नथो जी सके तो ईरान आजादी के दिफा लाए मुकम्मल ताकत से वेहण लाए तैयार है। नई दिल्ली में बर्क्स परदेही वजीर के इजलास के खिताब कदे ईरानी परदेही वजीर अब्बास इराकी चो है तो बिन साल दौरान ईरान के अमरीका इसराइल के बिन वहशियन हमलन के मुंह देणो पो है। UAE भी ईरान के हमले में सीधी रीत मुलस हो। ईरानी कौम कें धमकी या दबा आडो न चुकंदी मोहब्बत जो जवाब भी मोहब्बत से दीदी।
1: सोलर ए बैटरी से डायरेक्ट हले और बाकी तमाम पखन के मुकाबले में ये जबरदस्त हवा। रॉयल इन्वर्टर फैंस साथ जिंदगी भर का
2: सन क्रॉप ग्रुप का डायमंड।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
1: बैंकल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
1: किसाननि खे आलमी दिन पर सोना की जानिब से किसाननि को

चंगवाणी भरसां नसीर शाख ते पुराणी पुल ढहण दौरान किरी पई, टे पोहरे ते दॿिजी फौत। गोठ शाहज़ैन ख़ान बिजाराणी में नसीर शाख जी पुराणी पुल खे मज़दूर ढाहे रहिया हुआ त धमाके सां किरी पई। पुल ते कम कंदड़ टई मज़दूर दॿिजी फौत थिया। इलाइक़े वासियुनि हेवी मशीनरी जी मदद सां टिनी मज़दूरनि जा लाश ॿाहिरि कढिया। पोती पोहरे ते सुञाणप अबू बकर निंदवाणी, इमाम बख्श उर्फ ख़ान निंदवाणी ऐं धणी बख्श जाफरी जे नाले सां कई वई। इलाइक़े में सोग छायल। सिंध हुकूमत जो आबादगारनि खे भाण ते ॾिनल सब्सिडी वारा पैसा वापसि वठण जो फ़ैसिलो। सूबाई हुकूमत समूरनि डीसीस खे ख़त लिखी कणक न पोखींदड़ आबादगारनि खां पैसा वापसि वठण जो हुकुम ॾेई छॾियो। सिंध हुकूमत चयो आहे त डीएपी जी रक़म वठी कणक न पोखींदड़ आबादगारनि खे 5 सालनि ताईं का बि सब्सिडी न ॾिनी वेंदी। कुझु आबादगारनि फी एकड़ ते 14,000 रुपया हासिल करण बावजूद कणक जी पोखी न कई। हुकूमत रजिस्टर्ड आबादगारनि खे फी एकड़ ते भाण जे बदि में 14,000 रुपया ॾिना हुआ।

चीन अमेरिकी सदर के विच ओभर में जारी तकरार के निबेरे लाए तामीरी किरदार अदा करने की खातिरी कराए छी। चीनी सदर शी जिनपिंग सदर ट्रंप से मुलाकात दौरान ईरान के मामले से तामीरी किरदार की खातिरी कराई। शी जिनपिंग अमेरिका से नवा ए बेतरफा लागापा कायम कया। सदर डोनाल्ड ट्रंप है केतरा ही मसला हल कया जे बया हल ना कर सकन। अस चाहूं आबदा हार्बुस खुलल रहे ईरान वट एटमी हथियार भी न होजन। ईरान जो 90% दिफाई सिस्टम तबाह कर छो हाने वटस हमले की सलाहियत भी न रही है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल ब्रेट कूपर जो बयान। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स मूजिब अमेरिकी इंटेलिजेंस इदारे की गुजरी रिपोर्ट में जाहिर थे तो ईरान की मिजाइल सलाहियत अजा भी बरकरार है। हाँ सरकारी मुलाजमन के असासन की निगरानी एआई जरिए थी। जांच जो इख्तियार एफबीआर वट हों सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के इख्तियार की नाणे ए टैक्स वसूली बाबत सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के ब्रीफिंग डी वही एआई बदल सरकारी निजाम ऑफिसर्स की दौलत असासन में गैरमामूली वाधा से लागापियल इख्तियार अलर्ट जारी कर दिसंबर 2026 का 17 का 22 ग्रेड ऑफिसर्स या असासा डिजिटल डिक्लेरेशन सिस्टम जरिए अवाम आरो होंगे।

0: हाणे हैरत अंगेज़ ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो। अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरण में मशहूर व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरार होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज, मादो ऐं जिगर, गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघि, काम, दिल जी तकलीफ, अध मथे जो सूर, अखिन जी खारिश, जोड़न जो सूर, बुखार, बारन जो देर सां हलन, शुगर, दिमागी कमजोरी, खारिश, नासूर, खूनी वबादी बवासीर, उन्हें सभी बीमारियों जो मुकम्मल इलाज कयो वेंदो आहे। होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, टाइम रोजानो सुबुह 9 वगे का शाम 5 वगे ताई, बरोज जुमू मोकल आहे। एड्रेस सकरण होम्योपैथिक क्लिनिक, शेरवानी कीरिया, मेहरापुर रोड, सकरण। वधिक मशोरे राबते जे लाए 0327-99-84-763। मुल्क में गर्मी की शदीद लहर जारी है जेका सेहत लाए खतरनाक थी सके थी। मेहरबानी करे एहतियाती उपाय वठो। बिना जरूरत जे घर खां बाहर न निकरो। बाहर निकरण वक्त कंध ऐं जिस्म खे ढकियो। घणो पाणी वापराइण जी आदत ठायो। ORS या निमकोल इस्तेमाल करियो। हल्का, ढिलो ऐं हल्के रंगन वारो लिबास पाइण खे तरजीह ॾियो। ही पैगाम मुस्लिम हैंड्स, NDO ऐं स्टार नेटवर्क जे तआवुन सां अवाम जे आगाही लाइ पेश कयो वियो।
1: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
2: GAFM 88
1: नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: कहाँ हो यार? मैं कब से तैयार बैठी हुई हूँ, तुम हमेशा लेट कर देते हो यार।
1: मैं नहीं आ सकता जन्नत।
0: क्यों?
1: मैं अभी शादी नहीं करना चाहता।
0: व्हाट? तुम्हीं ने तो कहा था।
1: झूठ कहा था।

0: This program is brought to you by
1: Michael Habib, Rishta Bharose Ka.
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में. डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो.
3: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर. GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़.

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: रिश्ता भरोसे का।
1: It's 1 PM. This time check is brought to you by
0: Bankal Habib. रिश्ता भरोसे का।
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.

चीन अमेरिकी सदर के विच ओभर में जारी तकरार के निबेरे के लिए तामीरी किरदार अदा करण की खातरी कराई छी। चीनी सदर शी जिनपिंग सदर ट्रंप से मुलाकात दौरान ईरान के मामले से तामीरी किरदार की खातरी कराई। शी जिनपिंग अमेरिका से नवा बेतरफा लागापा कायम कया। सदर डोनाल्ड ट्रंप है केतरा ही मसला हल कया जे बया हल ना कर सकन। असा चाहूं था अबला हरबुस खुलल रहे ईरान वट एटमी हथियार भी न होजन। डोनाल्ड ट्रंप चीनी दौरा मुकम्मल कर वापस रवानो थी वो। ताकत जो इस्तेमाल नतीजा न दी ईरान के एटमी प्रोग्राम समेत समूरन तकरारन जो हल मुशावरत से निकरण घुर्जे। मसले जो तकड़ो हल अमेरिका ईरान बेन मुल्कन के मुफाद में है। चीनी परे वधारा चवा तकरार के निबेरे के लिए गाल राबतन वो सिलसिलो भी जल्द बहाल थियण घुर्जे। ईरान जंग शुरू ही न थियण घुर्जे। हा जंग जो जारी रहने कें भी मुफाद में न हों। चीन सदाई गाल सफारतकारी के ही हथी डी है।

ईरान जो 90% दिफ़ाई सिस्टम तबाह करे छॾियो। हाणे वटि संभले जी सलाहियत बि न रही आहे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड जे सरबराह एडमिरल ब्रेट कूपर जो बयान। अमेरिकी अख़बार न्यूयॉर्क टाइम्स मूजिब अमेरिकी इंटेलिजेंस इदारनि जी ॻुझी रिपोर्ट मां ज़ाहिर थिए थो त ईरान जी मिज़ाइल सलाहियत अञा बि बरक़रार आहे।

टंगवाणी भरसा नसीर शाख ते पुरानी पुल डाहण दौरान किरी पई टे पोरे ते दबजी फौत गोठ शाहजैन खान बिजाराणी में नसीर शाख जी पुरानी पुल के मजदूर डाहे रहा हुआ तो धमाके से किरी पई पुल ते कम कंदड़ टई मजदूर दबजी फौत थे इलाके वासिन हेवी मशीनरी की मदद से टिन्ही मजदूर जा लाश बाहर कढ़िया पोती पोरे तन की सुणप अबू बकर नंदवाणी इमाम बख्श उर्फ खान नंदवाणी धनी बख्श जाफरी के नाले से कई वही इलाके में सोग छायल

सिंध हुकूमत जो आबादगारनि खे भाण ते ॾिनल सब्सिडी वारा पैसा वापसि वठण जो फ़ैसिलो। सूबाई हुकूमत समूरनि डीसीस खे ख़त लिखी कणक न पोखींदड़ आबादगारनि खां पैसा वापसि वठण जो हुकुम ॾेई छॾियो। सिंध हुकूमत चयो आहे त डीएफपी जी रक़म वठी कणक न पोखींदड़ आबादगारनि खे 5 सालनि ताईं का बि सब्सिडी न ॾिनी वेंदी। कुझु आबादगारनि खे एकड़ ते 14,000 रुपया हासिल करण बावजूद कणक जी पोखी न कई। हुकूमत रजिस्टर्ड आबादगारनि खे फी एकड़ ते भाण जे बदि में 14,000 रुपया ॾिना हुआ।

0: सरकारी मुलाज़िमनि जे असासनि जी निगरानी AI ज़रिए थींदी। जांच जो इख़्तियार FBR वटि हूंदो। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न जे इख़्तियारनि जी नाणे ऐं टैक्स वसूली बाबति सेनेट जी स्टैंडिंग कमेटीअ खे ब्रीफिंग ॾिनी वई त AI ते ॿधल सरकारी निज़ाम आफ़िसर जी दौलत ऐं असासनि में गैर मामूली वाधि ते लाॻापियल इख़्तियारनि खे अलर्ट जारी कंदो। डिसंबर 2026 खां 17-22 ग्रेड जे आफ़िसर जा असासा डिजिटल डिक्लेरेशन सिस्टम ज़रिए अवाम आरो हूंदा। कोकेन कोइन अनमोल उर्फ फिनके जी निशानदेही ते अबुल हसन इस्फानी रोड ते पुलिस जो फ्लैट ते छापो। वॾी मक़दार में मंशियात हथु सजल थाणे ते केस बि दाख़िल कयो वियो। पुलिस मूजिबि फिनके जी निशानदेही ते बंदि पियल फ्लैट ते छापो हयो वियो, जितां मंशियात हथु आई। जांच दौरान फिनके पारां बीमारी जी शिकायत ते संदसि मेडिकल चेकअप बि करायो वियो। इस्पताल ज़रिए मूजिबि फिनके खे गुड़ शिकायत ते इस्पताल आंदो वियो, जिते संदसि टेस्टूं कयूं वयूं। मस्जिद अक्सा में इसराइली वज़ीर जे नफ़रत जोॻे क़दमनि जी सऊदी अरब पारां मज़हबी वज़ारत जो चवणु आहे त इसराइली वज़ीर जो मस्जिद अक्सा में इसराइली परचम फड़काइण ऐं रक़्स करणु इस्लामी ऐं आलमी कानून जी भञकड़ी आहे। सऊदी अरब पारां आलमी बिरादरी खां इसराइली जारहियत रोकराइण जो मुतालबो। सखर में औरत कारा इल्ज़ाम हेठि मुड़ुस सां गलो कपे बेदर्दीअ सां क़तल। नओं पिंड थाणे जी हद गोल टकरी वारे इलाइक़े में जवाबदार गुलाब रिंदज़ाल राज़ल खे छुरियुनि सां गलो कपे बेदर्दीअ सां कुही क़तल कयो। नाक क़तल कयो आहे। सां शादी तकरीब में फायरिंग नींगर मारिजी वियो। ॿ ॼणा पहुचू भील ऐं गेनू भील ज़ख़्मी थिया। ऐं कंडियारोबर सां नींगर जो शाख मां लाश हथु। लुंडो मोरीअ वेझो करन पील जो लाश शाख मां मिलियो। लाश ज़रूरी कार्रवाई बाद वारसनि हवाले।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय।
3: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्याल रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।

0: हाणे हैरत अंगेज़ ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हा, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देरि सां हलणु फालिज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं बरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-700।
1: मुल्क में गर्मी की शदीद लहर जारी है जेका सेहत लाइ खतरनाक थी सके थी। मेहरबानी करे एहतियाती उपाव वठो। बारन बुजुर्गन ऐं बीमार माण्हुनि जो खास ख्याल रखो। ॾींहं जो तमाम गरम वक्त सुबुह 11 खां शाम 4 वॻे ताईं उस खां पासो करियो। गर्मीअ खां बचाव तव्हां जे एहतियात में आहे। पंहिंजे ऐं पंहिंजे प्यारनि जी हिफ़ाज़त करियो ऐं ॿियनि खे बि ॼाण ॾियो। हीउ पैगाम मुस्लिम हैंड्स NDO ऐं स्टार नेटवर्क जे तआवुन सां आवाम जे आगाहीअ जे लाइ पेश कयो वियो।
2: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
1: जडे माँ पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वियो
2: किसानों के आलमी दिन पर सोना की जानिब से किसान

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हाँ हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पैंजो चेकअप करायो आई होम्योपैथिक तरीका इलाज सा शिफा हासिल करियो। जी हाँ, हाँ अवाजे पैंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूर मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो जिगर की गर्माइश गुर्दे की पथरी सोज पुरानी खंग जुकाम दिल की तकलीफ अध मथे जो सूर अखियन की खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन फालेज शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी बादी बवासीर इन्हें सभी बीमारियों को कामयाब इलाज किया वो है होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोजानो सुबह 9 बजे का शाम 6 बजे तक बरोज जुम्मो 12 बजे तक। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर वधिक मशवरे रबते 0327-99-84-763।
3: जो शहर पहजो घर सकरंट आई सकरंट जो आवाज
4: GFM 90.8।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
0: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे. हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.

कोकेन कोइन अनमोल और पिनकी की निशानदही थे अबुल हसन इस्फानी रोड से पुलिस जो फ्लैट से छापो बड़ी मकदार में मनशियात थे सचल थाने ते केस भी दाखिल कर पुलिस मुझे पिनकी की निशानदही थे बनतल फ्लैट से छापो है जितना मनशियात हथ आई जांच दौरान पिनकी पारा बीमारी की शिकायत से संदस मेडिकल चेकअप भी कराया वो अस्पताल जरिए मुझे पिनकी के गुर्दे ए मैदे की शिकायत अस्पताल आंदो हो जिते संदस टेस्टू कई वो सरकारी मुलाजमन असासन की निगरानी एआई जरिए थी जांच जो इख्तियार एफबीआर वट हों सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के इख्तियार की नाणे ए टैक्स वसूली बाबत सैनेट की स्टैंडिंग कमेटी की ब्रीफिंग डी वही एआई से बधल सरकारी निजाम ऑफिसर के दौलत असासन में गैरमामूली बाध से लागापल इख्तियार अलर्ट जारी कर डिसंबर 2026 का 17 का 22 ग्रेड के ऑफिसर्स के असासा डिजिटल डिक्लेरेशन सिस्टम जरिए अवाम आरो हों

ऐं नओं कोट भरिसां रहण शाह खां ठोरो माइनर डीपलो माइनर में पाणी जी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जो एहतजाज। आबादगारनि चयो आहे त पाणी न मिलण सबब फसल सुकी रहिया आहिनि। रहवासी पीअण जे पाणी जे लाइ बि परेशान आहिनि। शाखनि में पाणी छॾे फसल इंसाननि खे बचायो वञे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
2: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
3: हाणे हैरत अंगेज़ जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलण फालेज शुगर दिमागी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 AM खां शाम 6 AM ताईं बरोज़ जुमो 12 AM ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
4: मुल्क में गर्मी की शदीद लहर जारी है जेका सेहत लाए खतरनाक थी सके थी। मेहरबानी करे एहतियाती उपाय वठो। बिना जरूरत जे घर खां बाहर न निकरो। बाहर निकरण वक्त कंध ऐं जिस्म खे ढकियो। घणो पाणी वापराइण जी आदत ठाहियो। ORS या निमकोल इस्तेमाल करियो। हल्का ढिलो ऐं हल्के रंगन वारो लिबास पाइण खे तरजीह ॾियो। ही पैगाम मुस्लिम हैंड्स NDO ऐं स्टार नेटवर्क जे तआवुन सां अवाम जे आगाही लाइ पेश कयो वियो।
5: हर चप्पा हर गोशा
6: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
5: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: جڏهن ماءُ پنهنجو خیال رکھندی آهي त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
1: किसानों के आलमी दिन पर सोना की जानिब से किसानों को

लहर, जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों।
1: It's 3:30 p.m. This time check is brought to you by
2: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jekade kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
3: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
4: क्या देख रहे हो ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो बाहर से भेजी गई रकम बैंक कलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे जैसे के ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल्स स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें 538 शहरों में बैंक कलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक कलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं तो भाई साहब क्या समझे
5: बैंक कलबीब रिश्ता भरोसे का
6: हैरत अंगेज जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो जी हा हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरण में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलणु फालिज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं पर जुमो 12 वॻे ताईं एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर वधीक मशहूरु ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763
0: अजरक के रंगों से रंगी
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी
0: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज

0: क्या देख रहे हो?
1: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
2: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: किसानों के आलमी दिन पर सोना की जानिब से

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: It's 4 p.m. This time check is brought to you by
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे. हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़.

0: क्या देख रहे हो?
1: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
2: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरण में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, ज़ुकाम, दिल जी तकलीफ़, अधु मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलणु, फालिज, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस: हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकरण। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
5: मुल्क में गर्मी की शदीद लहर जारी है, जेका सेहत लाए खतरनाक थी सके थी। मेहरबानी करे एहतियाती उपाव वठो। बिना जरूरत जे घर खां बाहर न निकरो। बाहर निकरण वक्त कंध ऐं जिस्म खे ढकियो। घणो पाणी वापराइण जी आदत ठाहियो। ORS या निमकोल इस्तेमाल करियो। हल्का, ढिलो ऐं हल्के रंगन वारो लिबास पाइण खे तरजीह ॾियो। ही पैगाम मुस्लिम हैंड्स, NDO ऐं स्टार नेटवर्क जे तआवुन सां आवाम जे आगाहीअ लाइ पेश कयो वियो।
6: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
7: GAFM 88
6: नेटवर्क,
8: सिंध की आवाज।

0: It's 4:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: सकरन
4: क्या देख रहे हो?
5: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो.
4: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे. जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस. इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखे. 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है. अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं. तो भाई साहब क्या समझे.
6: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का.
3: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है.
7: सुनते रहो जी एफ एम 90.8.

0: क्या देख रहे हो?
1: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
2: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।
3: शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
2: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाए।
1: तो भाई साहब क्या समझे?
4: बैंक हबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: किसानों के आलमी दिन पर सोना की जानिब से

0: This program is brought to you.
1: लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़.

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

दोपहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: इट्स 5 PM दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
1: जडे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वियो
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
3: चल की सर मस्त धरती
4: फातिये मेहरान सिंध की एक और पहचान
3: GAFM 88 नेटवर्क
4: सिंध की आवाज

0: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, ज़ुकाम, दिलि जी तकलीफ़, अधु मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलण, फालेज, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस: हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
3: मुल्क में गर्मी की शदीद लहर जारी है, जेका सेहत लाइ खतरनाक थी सके थी। मेहरबानी करे एहतियाती उपाव वठो। बारन, बुजुर्गन ऐं बीमार माण्हुनि जो खास ख्याल रखो। ॾींहं जो तमाम गरम वक़्त सुबुह 11 खां शाम 4 वॻे ताईं उस खां पासो करियो। गर्मीअ खां बचाउ तव्हां जे एहतियात में आहे। पंहिंजे ऐं पंहिंजे प्यारनि जी हिफ़ाज़त करियो ऐं ॿियनि खे बि ॼाण ॾियो। ही पैगाम मुस्लिम हैंड्स, NDO ऐं स्टार नेटवर्क जे तआवुन सां अवाम जे आगाहीअ जे लाइ पेश कयो वियो।
4: अजरक के रंगों से रंगी,
5: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
4: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
5: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: हिकिड़ो खानदानी माना यकी हिकिड़े खानदान जी नेकी हूंदी आहे, जीअं सिंधी में चवणो आहे त हीउ खानदानी माण्हू आहे।
1: जी जी जी बिल्कुलु।
0: जे उन हालत सां पोइ कंहिं वजह सां पोइ झगड़ा थियनि था त पोइ हिकिड़ी तमामु नफ़रत पैदा थी वञे थी, पोइ ॿाहिरि टुटी वञनि था।
1: एग्ज़ैक्टली। त पोइ उहा नफ़रतूं पैदा थियण खां पहिरीं ख़तमु करे छॾियो न, कंफ्यूजन थींदियूं आहिनि माना ॿाहिरि पाण में वेही करे, भेनरियूं पाण में वेही करे, माउ पीउ पाण में वेही करे उहा मसला सॉल्व कनि, उन्हनि खे वधाइनि न, उन्हनि खे ख़तमु कनि। ख़ानदान में कुझु अहिड़ा माण्हू हूंदा आहिनि जेके उन मसलनि खे वधाईंदा आहिनि, त पोइ उहा वधाइण वारा ख़तरनाक ॻाल्हि आहे न।
0: जीअं उन्हनि में कुझु अदा भेनर भाइरूं सुठा हूंदा आहिनि, पोइ वेही उहो मसलो हल बि करे छॾींदा आहिनि, वरी माशाला पोइ ठही बि वेंदा आहिनि, बहितर थी वेंदा आहिनि।
1: हा, वरी कुझु शैतान गिर माण्हू हूंदा आहिनि जेके उन्हनि खे ॾिसी न सघंदा आहिनि, त न सभु अलॻि अलॻि रहूं माना कुझु अहिड़ी शैतानियूं कंदा आहिनि जंहिंसां ख़ानदान टुटी पवंदा आहिनि। बिल्कुल जनाब, इन ॻाल्हि खे न थियणु खपे, वेही करे पाण में उहा ॻाल्हियूं सॉल्व करियो ऐं पंहिंजे ख़ानदान खे गॾु कयो, ईअं न। जी जी जी हुकुम कयो था।
0: अॻे चकर भाउ मां फौजिया कोन ॿुधाई, अॼु असांखे फौजिया सुमरो लाज़मी ॿुधाइजो।
1: फौजिया सुमरो जो कहिड़ो गानो तव्हांखे ॿुधायां मां?
0: बस को थी अलाए जेको सुठो लॻे मां को बि हलाए।
1: ओके ओके, मां प्ले थो कयां, कंहिंजे नाते करणु चाहियो? अच्छा अच्छा, ठीकु आहे, थैंक यू सो मच, पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो। थैंक यू। हमारे साथ है जनाब खालिक भाई फ्रॉम जलूरी, और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 03000113488 पर, और इन्होंने कहा है कि जनाब हमें फौजिया सुमरो सुनवाएं, जरूर सुनवाएंगे जनाब, क्यों नहीं सुनवाएंगे। लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
1: वाह वाह वाह, इरफान हमारे साथ मौजूद हैं, कैसे इरफान भाई?
2: अल्हम्दुलिल्लाह अशफाक भाई, बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? ठीक है,
1: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताओ क्या हो रहा है गर्मा गर्मी में आजकल?
2: मैं आपसे पूछने वाला था कि गर्मी कैसी चल रही है?
1: गर्मी तो बहुत अच्छी चल रही है, और इतनी ज्यादा लग रही है ना मुझे, मुझे तो बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, मुझे तो पसीने ही नहीं खत्म होते मुझसे।
2: आज तो थोड़ी हवा चल रही है,
1: हवा चल रही है, बट वो जो तपिश होती है ना वो तो है ना आधा।
2: हाँ बिल्कुल, वो तो है, लेकिन जो पहले दो तीन
1: वो तो बड़ी खराब गर्मी थी, वो बहुत खराब गर्मी थी यार।
2: अच्छा, हवा भी नहीं लग रही।
1: जी जी जी, इरफान ये बताओ, आज हम मना रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज, मतलब खानदानों का आलमी दिन, तो ये बताओ कि खानदान में जो सेपरेशन हो जाती है, बहन भाई से अलग हो जाता है, भाई बहन से अलग हो जाते हैं, माँ बाप से औलाद अलग हो जाती है, और मतलब मामू भांजे से नहीं बात कर रहा होता, चाचा भतीजे से बात नहीं कर रहा होता, तो ये क्या चीज है, कौन से सिम्टम्स होते ऐसे होते हैं जो कि हमें ये सब चीजें करने पर मजबूर कर देते हैं?
2: आजकल जो भी इंसान है उसमें मैं हूँ या आप हैं, लेकिन हमसे हमें थोड़ी सी भी बर्दाश्त नहीं है।
1: हाँ बिल्कुल ऐसे ही,
2: हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है।
1: ऐसा ही है बिल्कुल।
2: हमें तो इतना ही कहूँगा, अगर डॉक्टर में कहेंगे आप, अगर तफसील से जाऊँगा तो फिर तो ये बात बढ़ जाएगी।
1: हाँ बढ़ जाएगी बिल्कुल।
2: और फरमाइश तो आपके पास आ गई है, तो
1: फरमाइश ऑलरेडी
2: पता है कि सिंगर दूसरों को होता है तो सॉन्ग मेरा होता है।
1: अच्छा चले बताएं, आज आप बताएं, सिंगर दूसरों का सॉन्ग आपका?
2: फौजिया सुमरो का सॉन्ग है, जेके उदारिया मुतोला पकीरा, जमा पास के लिखी शायरी है, बहुत अच्छा सॉन्ग है।
1: ओके, जेके उदारिया मुतोला पकीरा।
2: जी, जेके उदारिया मुतोला पकीरा,
1: हुआ मोडे मोडे अच्छी पोतान, हुआ पकी मोडे पाची व्यान।
2: इंशाल्लाह इन जुमलन में तांकी ये सॉन्ग मिली हुई ना इश्ताक भाई,
1: मिली हुई मिली हुई मुके मिली हुई
2: मिली हुई
1: हाँ हाँ जे तेरे चाय माँ मत मोडे पाची व्यान हुआ पकी।
2: ये सॉन्ग ॿुधी ॾिसियो पोइ तव्हां मूंखे ॿुधाइजो त जेको मुंहिंजो पसंदीदा सॉन्ग आहे फौजिया सुमरे जे आवाज़ में, उहो केतिरो नाइस, केतिरो सुठो सॉन्ग आहे।
1: बिल्कुलु बिल्कुलु, फौजिया सुमरे लेजेंड गुलकार आहे असांजी। जी जी
2: जी,
1: फौजिया सुमरा असांजी लेजेंड गुलकारा आहे, त यकीनी तौर ते हुन जो सॉन्ग त कीअं न मिलंदो।
2: बिल्कुल, मां त इहे चवंदुमि त सरदी न बल्कि पूरी सिंध जी कोयल फनकार आहे।
1: बिल्कुलु, पाकिस्तान भर में ऐं दुनिया भर में हुनखे ॿुधियो वेंदो आहे, जिते जिते सिंधी सम्झी वेंदी आहे।
2: बिल्कुल, जिते सिंधी सम्झी वेंदी आहे ऐं ॻाल्हाई वेंदी आहे उते फौजिया सुमरे खे ॿुधियो वेंदो आहे, ऐं अॼु बि रेडियो पाकिस्तान ते जॾहिं बि सिंधी महकमा या कोई प्रोग्राम हलंदो आहे त हुन में फौजिया सुमरो शामिल हूंदी आहे। अगरि ॿी स्टेशनियूं न बि सही, पर रेडियो पाकिस्तान मिठी हमेशह फौजिया सुमरो खे पंहिंजे हर प्रोग्राम में शामिल कंदो आहे।
1: बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु, लेजेंड सिंगर आहे असांजी। अच्छा, कंहिंजे नाले डेडिकेट करणु चाहियो था?
2: सलाम सिस्टर मिसेस अली फौजिया फरजाना राय कुमरो, और उसके बाद चले उर्दू सिंधी मिक्स हो गई है।
1: कोई बात नहीं, हमारी शास्त्रिक बन जाती है वो, जो सलाद नहीं होती जिसमें हर चीज शामिल होती है।
2: राय कुमरो मंताज कुमरो हाफिज गुलाम अहमद साहबान लुकमान चाचर हुसैन बख्शो फाइन मिस्टर बचल शमान नजीर मंगीरो जेके दोस्त सभी के इरफान अली थे पारा थोड़ा सारा सलाम।
1: वालेकुम असलम इरफान थे पांचों खास ख्याल रखो। थैंक यू अदा सो मच।
2: थैंक यू।
1: बेबी तनाम हमारे साथ इरफान थे वो तमाम बधी रहा हो जी एफ एम एच नेटवर्क असानी सिंधी भी हलंदी असानी उर्दू भी हलंदी असा पंजाबी भी गलायूं था असा पश्तो भी गलायूं था असा सम जो है बलूची भी गलायूं था थैं छे हाल है थैं जो हाल है तमाम असा के कॉल कर सको था 03000113488। अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम साई चाला बा प्यारा।
1: हाय मुजा प्यारा भा केर तो गलाय असा सबनी सा गरे किथा प्या गलाय
0: आमिर बख्श मंगनार जिलो गोटकी मिस्री गोठ मा।
1: वाह वाह वाह मिस्री जड़ा मानु असा सबनी सा गड मौजूद है आमिर बख्श साहब गर्मा गर्मी की था गुजारियो
0: बस साईं गर्मी ॾाढी आहे काठियुनि ते भुॻो रे तितरी गॾा मुंहिंजो भाउ जो प्रोग्राम ॿुधो वरी जुमो निमाज़ पढ़ी।
1: वाह वाह वाह
0: वरी काठियुनि जो टाइम थी वियो।
1: हा ज़बरदस्त वरी काठियूं काठियुनि जे माना काठियूं वॾियूं वॾियूं अथव।
0: हा काठियूं वॾियूं आहिनि बसि मां खणी वियो त सही आहे कमकार त सही आहे न घर जो
1: कमकार त बिल्कुलु ठीकु आहे बिल्कुलु जनाब इहा कमकार त जेको आहे करणु खपे छो त इंसान चौकस रहंदो आहे।
0: बिल्कुलु।
1: अच्छा मुंहिंजा प्यारा भाउ अमीर बख़्श इहो ॿुधायो त अॼुकल्ह जेका खानदाननि में लड़ायूं थी हणनि खानदान सेपरेट थी वञनि था अलॻि थी वञनि था विढ़नि छो था भई इहे कहिड़ी वजह आहिनि जेका विढ़नि था।
0: ऐं अॻे असां नंढा हूंदा हुआसीं बाबे वारा चवंदा बाबा गुज़ारे वियो अॻे मोहबत जाम हूंदी
1: आहे
0: कोन्हे बसि माण्हू
1: हा बिल्कुलु बिल्कुलु मोहबत खे वधाइणु खपे अपनायत खे वधाइणु खपे अनाऊं ख़तमु करणियूं खपनि कूड़ ख़तमु करणो खपे साड़ ख़तमु करणो खपे पाण मां त इहो मोहबतूं वधंदियूं।
0: बिल्कुलु मोहबतूं वधंदियूं बसि कलाक सां माण्हू हर मन सां तेज़ थी वञे सिबर जो मन मिठो हूंदो आहे।
1: बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु अमीर बख़्श भाउ तव्हां मिठा मिठा माण्हू आहियो इहो ॿुधायो असां हाणे तव्हांखे मिठी मिठी फौजी सुमिरो ॿुधाइण वारा आहियूं कंहिंजे नाले ते करणु चाहियो।
0: प्यारो दोस्त आला दाद मार मोहम्मद अली मार अब्दुल भंगवार बुद्ध बुरो पठान खान पटकेयारो
1: जी जी
0: इनाम मार ओके
1: ओमन मार ओके ओके ओके थैंक यू सो मच अमीर बख्श फ्रॉम घोटकी। और जनाब हमारे साथ उन्होंने नाम लिया एक बहुत ही प्यारे से मतलब हमारे लिसनर है पठान खान पटके वारो जो पठान खान पटके वारो असा के बुद्ध ही अथो पर असा के कॉल नथो करे माना असा के नाराज थी वाला है छो तो पठान खान पटके वारो जिते भी है असा उनके याद क्यों था असा तमाम घना पुराना लिसनर आहिन जी अचन ता असा सबनी सा पांजी गाल शेयर कन। अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम
1: जी जनाब केर असा सबनी सा गद
0: अस्ताद भाई
1: इमाम दिनो भमरो साले पट का साले पट बड़ा की हन केड़े हालत में आहिन
0: पप्पा ठीक ठाक तने दवांगा के सब पाहिर राम खेले समय ते।
1: अच्छा इमाम बख्श साहब यो बुधायो ता साले पट में भी ए गर्मी पई थी जते जी सखर में पई थी।
0: हां तकरीबन नहीं आए नहीं आए पर माशाल्लाह सुठो लंबला
1: छो त उते त मुझे ख्याल में वण आइन वण भी आइन वाहू भी आइन आई उते त जाम पानी आसे पासे में ई न
0: आई अज 40 जाने तरह से डेढ़ पर 52 50 हुंदी आ त को मसलो न हुंदो।
1: आई वाह वाह माशाल्लाह ताके ई खुश रखे थदो रखे यो बुधायो फौज सुबुरो तो प्ले करण चाहे केन जे नाले त करण चाहे
0: के ओदारा मोटले पछि हातन जदानी पर तकी जा आही किते पर देसी मुसाफिर तू जी नती पे मुखी खबर
1: कंहिंजे नाले करणु चाहियो चले ठीकु आहे थैंक यू सो मच इमाम बख़्श भमरो साहब ओके ओके ओके जी जनाब असां तव्हां सभिनी दोस्तनि लाइ प्ले कयूं था फौजिया सुमरो जेके ॾियारिया मुतु लाइ पखी इरफान थेबो जी फरमाइश ऐं असांजा अमीर बख़्श साहब जी फरमाइश ऐं जेको असांखे पहिरीं फरमाइश कई आहे झलूरीअ खां ख़ालिक भाई जी फरमाइश ते ॿुधो ऐं खोड़ सां इंजॉय कयो

0: असांजो पाणी साफ़ न आहे, तंहिंजे करे त असां बीमार था थियूं। असांखे पाणी ऐं सफ़ाई ॿिन्हिनि जो ख़्यालु रखणु घुर्जे।
1: केॾो सियाणो पुटु आहे मुंहिंजो।
0: बाबा, इहो ई जासूस तव्हांखे बचाईंदो।
2: साफ़ पाणी, महफ़ूज़ ज़िंदगी, दस्तन खां बचा। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो।
3: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600cc कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
5: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: हर चप्पा हर गोशा
7: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
6: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: होती हैं एनी हाउ, और अपने बच्चों को बेहतर सेहत, बेहतर तालीम और बेहतर तर्ज जिंदगी फराम करना वालदैन की जिम्मेदारी होती है। लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, क्या हाल ठाक भाई, खैरियत है?
0: ठीक ठाक मेरे प्यारे से भाई, कौन हमारे साथ?
1: मीरपुर खास से आपका भाई बात कर रहा हूँ।
0: मीरपुर खास से मेरे प्यारे से भाई का नाम भी तो होगा ना कोई?
1: मेरा आपका भाई का नाम अली नवाज बिरोही।
0: अली नवाज बिरोही साहब, कैसे हाल चाल है? बहुत अरसे बाद आ पाए यार।
1: यार बहुत, ये तकरीबन 7-8 महीना हुआ आपसे बात नहीं।
0: यार क्या हो गया, कहाँ गुम हो गए थे आप?
1: थोड़ा काम काज के मसले में ना।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, सही से तो आपका काम काज ठीक जा रहा है?
1: अलहम्दुलिल्लाह।
0: अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। और गर्मा गर्मी मीरपुर खास में है या नहीं है? मैंने सुना है मीरपुर खास में ठंडी हवाएं चलती हैं।
1: गर्मी बहुत है,
0: गर्मी बहुत
1: होता है, लेकिन गर्मी जरूर है।
0: अच्छा गर्मी भी होती है, सही सही सही। अच्छा ये बताएं मेरे प्यारे से भाई कि खानदान को जोड़ने वाली कौन सी चीजें आपकी नजर में इम्पोर्टेंस रखती हैं कि खानदान जुड़े रहे?
1: सफर जो होता है ना।
0: जी जी जी जी,
1: ये बड़ा एक कीमत है,
0: अहम चीज होती है सब्र। हाँ बिल्कुल,
1: ख्याल रखे, सब्र करें, इखलास से पेश आ रहे हैं, ये चीजें होता है ना।
0: जी जी जी, तो खानदान जुड़ के रहते
1: हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की मेरे प्यारे भाई अली बिरोही ने। और प्यारे भाई अली बिरोही ने, और अली भाई ये बताइएगा गाना कौन सा सुनना है आपने?
1: यार गाना तो

0: आ गया आ गया आ गया ये वाला गाना आपका फरमाइशी गाना
1: मेरे गीता दी रानी सलामाने जवानी
0: वाह वाह वाह वाह वाह तो संग मैंने सराय की भी आंधी है
1: बिल्कुल मैं तो यार अतावले का बड़ा फैन हूँ यार इमरान अच्छा, खान का
0: थोड़ा गाना गुनगुना के बताओ मुझे आप
1: बदला

0: जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त अली भाई, आपने तो वाकई दिल जीत लिया, थैंक यू सो मच। और ये किसके नाम करना चाहेंगे?
1: यार मैं तो जितने मेरे भाई सुन रहे ना,
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अली भाई, और हर जुमे के जुमे हमारे साथ आया करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हमारे साथ जनाब मीर खास से अली ब्रोही भाई, और अली ब्रोही बने का के अतौल्ला का सॉन्ग चलाएं। तो बिल्कुल जनाब, आपकी फरमाइश सलाखों पर आपका अपना अशफाक आपके साथ मौजूद है। 5:41 हुआ चाहते हैं, और थोड़ी देर में 42 भी हो जाएंगे, 43 भी हो जाएंगे, इसी तरह टाइम गुजरता जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि गुजरते टाइम के साथ आपके साथ हमारा कनेक्शन और ज्यादा मजबूत होता जाए, आपके साथ हमारा कनेक्शन और ज्यादा मजेदार होता जाए। तो जनाब देर किस बात की है, आप हमें कॉल कर सकते हैं 03000113488। जहां जहां तक मेरी आवाज आ रही है वहां वहां तक के तमाम दोस्तों को हम यही कहना चाहते हैं, जनाब जल्दी से आ जाइए, अपने मैसेजेस भी हमारे साथ शेयर कीजिए जनाब, और हमारे साथ बातें शातें कीजिए, और अपने मैसेजेस दीजिए जनाब, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जब आएँ तो बड़े धड़ल्ले के साथ आएँ, बड़े मज़े के साथ आएँ। तो आप हमारे साथ यूं ही रहें और इंजॉय करते रहें हमारे शो को, जिसका नाम है आई लव यू ऑल। और जनाब हमारा नंबर वन से अगेन आपकी समातों की नज़र करता चला, 03000113488 हमारा नंबर है, और हम आपके साथ हैं शाम के 7 बजे तक। आज इंटरनेशनल फैमिलीज डे मनाया जा रहा है, खानदान और वालदैन और दीगर देखभाल करने वाले बच्चों की बहबूद और उनकी नशोनुमा में अहम किरदार अदा करते हैं जनाब। वो बच्चों की पहचान, उनको पहचान, मोहब्बत, देखभाल, रिस्क और तहफ़ फराम करते हैं, क्योंकि ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है और वो बदरजा अतम इस पर पूरा उतर भी रहे होते हैं। कौमी समाजी पॉलिसियों और समाजी सरमायाकारी के पैकेजों के एक अहम हिस्से के तौर पर खानदान और वालदैन के लिए तआवुन, जिसका मकसद गुरबत को कम करना, अदम मसावात को कम करना और मजबूत फलाह बहबूद को फरोग देना है, बच्चों के हकूक के कन्वेंशन के रूह के मुताबिक दिया जा रहा है। बिल्कुल जनाब, और बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना हम सब की अवलीन जिम्मेदारी होती है, उनको बेसिक सहूलतें देना हमारी जिम्मेदारी होती है, और ये हम सब को पूरी करनी चाहिए। लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
2: हेलो,
0: अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
0: के रसा सबनी सा गरदा
2: शामीर अली चाचर पनवाकिल का गलाया जसु।
0: शामीर चाचर फ्रॉम पनवाकिल, के रहा हाल चाल है शामीर भाव?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का जय शान लगा कनी मार के दी मेहरबानी लगी पे आ ता पांच हाल बतायो ता
0: माशाल्लाह माशाल्लाह ठीक है माशाल्लाह। तमा भारन जी दुआओं सा सबनी सा गड मौजूद आहिन, यो बुधायो चा कंदा शामीर भाव?
2: पांजी जमीन आए, जमीन जो कम कार कंदा हो।
0: अच्छा माशाल्लाह, त की हाले तो ता जो
2: कम कार तमाम बेहतर है, सुचो हाले जो
0: आइन दफा तमा जमीन ते छा माना पोखियो आप? जो गानो हाँ फरमाइश आई है अली ब्रोही भाई जी, तो वो गानो प्ले कर कैसे नाला करना चाहो?
2: हाँ असाजे पीरी प्यारो भाई लुकमान चाचड़ आए, बाबू अदील अबड़ो साहब आए, अब्दुल्ला बंदवार आए, अमदाद अली शाह आए, जेके पीरी प्यारा भाई बुधन पिया है, असाजी भेनर बुधन पे
0: वालेकुम असलम चाचड़ भाई, पाजो खास क्या रख जो पनवाकिल वाला भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बिल्कुल जनाब, पनवाकिल से हमारे साथ आए, मीर खास से हमारे साथ आए, और जनाब हमारे साथ हर जगह से हमारे साथ तमाम लिसनर्स आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेते हैं शो की एक और कॉल, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 03000113488 पर। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम।
0: के रदा सा सबनी सा गद? रुस्तम भाई, के हाल चाल तो बताए, गोठ वाला सब खैर में आनम? रुस्तम छा कंदो आ भाव?
3: बनी बारे जो कम कंदा हूं।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, की हले तो तां जो बनी बारे जो कम?
3: तमाम सुठो पे हले माशाल्लाह।
0: अच्छा त बनी बारे जो कम के कदी खा वठी करी ताई कंदा आयो, मना उस समय कंदा आयो उस गर्मी हा इलाही? हाँ गर्मी भाई, गर्मी मकानों पेटला था मानू गर्मी में कम कंदो आ, भला हाने छा क्यों ये ना यार, कोई दुआ बुआ घुरो तो कोई

0: मिक्स बारिश थी, कोई मौसम चेंज थी वने जी,
1: गर्मी हुजे या सर्दी कम त करणो
0: आहे, कम त करणो आहे ना, काॾे वेंदासीं भला, दुआ कयो झोलियूं भरे भरे त साईं मींहुं थोरो वसाए रहमत जो
1: जी,
0: जी, जी मौसम सफ़ा चेंज थी वञे
1: जी, जी।
0: हा अच्छा रुस्तम भाई इहो ॿुधायो गानो हलायां थो कंहिंजे नाले सां करणु चाहियो
1: हा असांजा दोस्त पिया ॿुधनि दिलीप कुमार मेंगवाल मलिक मोहम्मद बलोच मुनीरा मंद सियाल
0: कुर्बान
1: अली खास केली चोहन कुमार कोली
0: सही
1: ऐं असांखे फौजिया सुमर जो नगमो थी सघे त ॿुधाए थो
0: फौजिया सुमर हाणे हाणे त मां प्ले कयो आहे
1: अच्छा पोइ मां न ॿुधी सघियसि मां हींअर रेडियो आन कयो
0: आहे अच्छा अच्छा कोई ॻाल्हि नाहे कोई ॻाल्हि नाहे मां तव्हांखे अताउला जो गानो ॿुधायां थो थैंक यू अदा रुस्तम भाई पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो ओके हमारे साथ रुस्तम भाई के लिए हम गाना प्ले करेंगे और ब्रेक के बाद अताउला प्ले करते हैं आप इस वक्त ब्रेक को एंजॉय कीजिए
2: मोरू नौशहरो मीरपुर खास लाड़काना सखर गूंज रही है हर जगह पर सिंध की आवाज़ GA FM 88 नेटवर्क

0: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का। किसानों के आलमी

0: अमाजे शहर सखर में होम्योपैथिक में 43 साल जो तजुर्बो रखंदड़ प्रोफेसर होम्योपैथिक डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद मरीजन जो मुआइनो करे रहो आहे हर किस्म जे आसाबी अमराज जोड़न जो सूर मैदे में जलन कब्ज तेजाबियत गुर्दन जी पथरी बवासीर हाजमे जी खराबी आई बेन बीमारन जो बगैर ऑपरेशन होम्योपैथिक तरीका इलाज मुताबिक मरीजन जो इलाज करे रहो आहे प्रोफेसर होम्योपैथिक डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान रोजाना सुबह 10 बजे का शाम 5 बजे ताई जुम्मो मोकल एड्रेस आगा होम्योपैथिक क्लिनिक पुलिस हेडक्वार्टर चौक सखर राबते जे लाए 03-26-22-00-440
1: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی
2: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز GAFM 88 کی آواز
1: GAFM 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: जी जनो वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से हम आपके और आप हमारे साथ मौजूद हैं। शेर भी आके तेरी पतला लक तेरा शाला माने जवानी, और बहुत प्यारा सा गाना हमने आपकी समातों की नजर किया। अली मोहम्मद रोई की फरमाइश पर लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुझे प्यारा भा, केर प्या गलायो के था प्या गलायो। हाँ जी जी, हाँ जी जी, तां जी प्यारन भाइन जी दुआओं सा सबनी संग लड़काने वाला की है बुधिया। लड़काना में तमाम घणी गर्मी पई थी,
1: बाबर
0: शेख छॾी न वियो थी या भा कारी वियो
1: चाहियो
0: देखते हैं जनाब ये गाना और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब हम अपने कॉलर को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम।
2: हेलो
0: हेलो जी जी हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: हां भाई मैं हबीबुल्ला सोलंगी तो गल रहा
0: हूं। हबीबुल्ला सोलंगी साहब केड़ा हाल चाल तब हबीबुल्ला भाई। हेलो जी जी आवाज अच्छे थी।
2: हां सही है सर हम भी ओके वाले सही खुश हो।
0: ठीक ठाक हबीबुल्ला भाई छा कंदा हो
2: यो, बनी यो,
0: यो, वो, जो फसल ओके ओके माशाल्लाह माशाल्लाह।

0: जबरदस्त सा गाना हम तो कॉल ले चुके हैं और चले जनाब एक और कॉल ले लेते हैं फिर उसके बाद गाना चलाएंगे, ठीक है ना। जैसे आप कुछ जहां आप पूछ लेते हैं जो कि एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: वहीद वफा जतोई, क्या हाल चाल, तब ठीक ठाक आयो?
1: शुक्रा बस तुक्रा जन हफ्ते के वो इंतजार हूँ।
0: अच्छा थैंक यू सो
1: मच। सलाह नाराज नहीं
0: दादा, ट्रेडिंग क्यों
1: बिल्कुल कयो यार ब्लैक घंटे खुशी परेशानी खत्म था कयो।
0: अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह जरूर इन गाल ते ताजी अमल कंदा से ट्रेड या जरूर कंदा से ताजा शो
1: सर आचर।
0: ओके मिठाबा, ओके। अच्छा वही भाई
1: जी
0: बेओ घर में गर्मा गर्मी किए तले
1: यार सच पुछी दा आज वरी ना के करनी छत पे जे ना ये चार दिन हुई बिल्कुल हुई भाई आज जन कुछ मौसम सही।
0: हां कुछ मौसम वाकई सही है। आयो बुझायो शर्मा सिंधी जो गानो तो हलाया हलबो हाने लड़े लड़े तो कहंदे नारा था करना चाहो जी हाँ बिल्कुल अच्छा वफा अब्दुल वहीद जतोई सिंधी में नालो था सर जो फेसबुक पे
1: सर्च करे मां सा मैसेज करे रातो तो करे।
0: ओके ता जो पैगाम पुजी वो
1: आदमी मजे भाग आ जाए रे मजे तोई मजे भाग आया रे मजे तोई आ शाम में चाहे नार तारे खाना हो पानी पीना हो एस्टा का शेख का और सारा सलाम बाद जितने बुदन था वफा अब्दुल वहीद जतोई पर सलाम करे सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वफा वहीद साहब, थैंक यू। हमारे साथ वफा वहीद और अब गाना प्ले करते हैं, इस गाने को सुनिएगा हमारे साथ रहिएगा।

0: PM. This time check is brought to you by.
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे. ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो.
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खिबसे की बनी है आवाज.
2: जीए एफएम 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज.
4: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज.

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: किसानों के आलमी दिन पर सोना की जानिब से किसान

0: केरु शौक हो ना तोखे मुझे रो पाए तैयार थियण जो
1: तू आज भी हसी
0: थोरो पाए तो देखार
2: ना मां मां थकी पई आ
0: न पुट ये थकन है रत जी कमी है दिसता केडो ना फिको थी हुआ है तुझो चेहरो
2: छा कया मां
0: 6 महीना थी वैन पुट तू उम्मीद साही आई हाने वनी तो शुरू कई है फौलाद जी गोरी कच्चू भाजू खाईंदी कर पुट तोखे खबर है असा त मेवन जो खलू खाई विंदा हुआ से उनन साई तो खून ठांदो है इनसा न तोखे कुछ थिंदो अनई बा रखे पुट हाने तू मां थण वाली आही पहंजो ख्याल रखन बियन खां प वधिक जरूरी है
1: मेरी बातें तेरे जिम्मे अब ये तुझको
3: जडे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफां पेश कयो वियो
4: हाणे हैरत अंगेज़ ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो जी हाँ हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरण में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन फालेज शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं पर जुमो 12 वॻे ताईं एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763
5: कमी गर्मी जी शदीद लहर जारी आहे जेका सेहत लाइ खतरनाक थी सघे थी महिरबानी करे एहतियाती उपाउ वठो बिना ज़रूरत जे घर खां ॿाहिरि न निकिरो ॿाहिरि निकिरण वक़्तु कंध ऐं जिस्म खे ढकियो घणो पाणी वापराइण जी आदत ठाहियो ORS या निमकोल इस्तेमाल करियो हल्का ढिलो ऐं हल्के रंगनि वारो लिबास पाइण खे तरजीह ॾियो ही पैगाम मुस्लिम हैंड्स NDO ऐं स्टार नेटवर्क जे तआवुन सां आवाम जे आगाहीअ लाइ पेश कयो वियो
6: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: लोग चांद पे पहुंच चुके हैं, अपने घर के कमरों में लोग यहां पर एक दूसरे से
1: सिंध की हो तो आवाज भी
0: दौर में खानदान इंसानियत की आखिरी पनागाह बनकर उभरता है। जंगों में महंगाई, बेरोजगारी, ज़हनी दबाव, तन्हाई और टूटते हुए रिश्तों की इस अहद में अगर कोई इदारा इंसान को मोहब्बत, तहफ़्फ़ुज़, एतमाद और सुकून फराहम कर सकता है तो वो इदारा खानदान है, हमारा अपना खानदान। बिल्कुल जनाब, 15 मई को यौम आलमी खानदान मनाया जाता है। सिर्फ एक रस्मी दिन नहीं होता बल्कि इंसान को अपनी असल शनाख्त याद दिलाने का दिन होता है। ये दिन हमें सोचने पर मजबूर करता है कि तरक्की, दौलत और टेक्नोलॉजी की दौर में हम कहीं अपने रिश्तों से दूर हो बैठे हैं, हमने उन्हें खो दिया है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने रिश्तों को जमा कीजिए, उनको एक जगह पर पनपने का हौसला पैदा कीजिए, उनको एक जगह पर रखने का हौसला पैदा कीजिए और उनको खुली फिजा में सांस लेने दें ताकि रिश्ते बहुत अच्छे ग्रो कर पाएं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त कौन, अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ मेरा बेटा है महमूद और मुमताज का कोई सॉन्ग सुनाओ जनाब। हमारे साथ है इनाम जमाली फ्रॉम बच्चल शामयानी सखर। तो हमारे साथ हैं इस वक्त इनाम खान जमाली, कहते हैं मेरा बेटा महमूद भी आपको सुन रहा है। थैंक यू सो मच महमूद बेटा, जीव हजारों साल और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो। और इनाम जमाली साहब, मैं आपको गाना जरूर सुनाऊंगा, लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, कौन हमारे साथ मौजूद है जनाब? नंबर डायल करना बंद कर दें, आपकी कॉल लग गई है। कौन हमारे साथ है जी? मुझे नहीं लगता कि इनको मेरी आवाज़ आ रही है, शायद इनके कॉल में कुछ डिस्टर्बेंस है, पर कोई बात नहीं है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। लेते हैं शो की एक और कॉल, ये कट करनी पड़ी, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा हूँ कि कोई कॉलर थे। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम इश्ताक भाई, क्या हाल
0: है? ठीक ठाक मेरे प्यारे से भाई, कौन हमारे साथ?
2: अली हसन बाबू।
0: क्या हाल है अली हसन भाई, ठीक ठाक हैं आप?
2: बस शुक्र भाई,
0: हाँ फर्स्ट क्लास जिंदगानी किए थे हले ताजी अली हसन बाबू साहब।
2: बस शुक्र जिंदगानी
0: भी सही थी, शुक्र हर हाल में शुक्र अदा करना खपे, छो असांखे शुक्र गुजारी वाली आदत है पढ़ाई घुर्जे, न तो हर मानू अजकल तकरीबन ना शुक्र थी चुका है, केतरो भी कमाइंदो आ, केतरो भी फैसिलिटी ना वरी चवंदो आ कुछ ना आए असां वट कुछ ना आए, अगर असां अला के शुक्र अदा कंदासीं त अला असांखे वधीक ॾींदो गंज ॾींदो। शुक्र अदा करणो खपे छो त अगर असां साह वठूं था अगर असां चिरूं पूरो था त इहा अलाह सां शुक्र
2: आहे।
0: अच्छा मौला मेरा भी घर होवे, ओके कंहिंजे नाले था करणु चाहियो, कंहिंखे सलाम ॾियणु चाहियो था? थैंक यू सो मच, तव्हां शिरकत कई प्रोग्राम में, पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो अली हसन बाबू साहब। थैंक यू। हमारे साथ है जनाब अली हसन बाबू, हमारे रेगुलर लिस्नर, रेगुलर कॉलर। और जनाब आप देखते हैं लाइन पर हमारे साथ कौन आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम,
0: ठीक ठाक सफा टाक चंगा भला के नालो ताजो अदा बुधायो, किथा कॉल कई आ?
2: सदरो जतो इनला मुजो प्रोग्राम बा
0: सदरो, क्या छाला ठीक ठाक अदा सदरो?
2: खैर तो मेहरबानी अदा खैर आप तक
0: सही पर फर्स्ट क्लास। केड़े शहर में कॉल कई आ ता?
2: साईं ड्रिगपुर मा।
0: अच्छा ड्रिगपुर मा, ड्रिगपुर का क्या?
2: ड्रिगपुर जे कॉलो कल कोटारो करो पर लारे खाए ता ड्रिगपुर साईं।
0: अच्छा अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, ड्रिगपुर वाला सब केड़े हालन में आइन? हाँ तव्हांजा कमकार कीअं था हलनि? हा गर्मी त आया था, गर्मी में कुझु थधा थधा शरबत पियो, कोई कोल्ड ड्रिंक्स पियो, कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स पियो, मज़ो अची वञे जीअं।
2: बिल्कुलु बिल्कुलु,
0: हा ज़बरदस्त लस्सी ठाहे पियो, मिठी बि ऐं नमकीन बि। हा ज़बरदस्त ज़बरदस्त, छो त ॻोठनि में त लस्सी हूंदी आहे न जाम, असांखे त लस्सी पीअण लाइ पापा घंटा घर वञिणो पवंदो आहे, कॾहिं म्यानी रोड वञिणो पवंदो आहे मिठी लस्सी लाइ।
2: जी जी बिल्कुलु।
0: अच्छा इहो ॿुधायो, मां हाणे मनकबत तव्हांजे लाइ हलायां थो, मौला मेरा बि घर होवे, कंहिंजे नाले कोई पैगाम ॾियणु चाहियो था? जी जी
2: जी
0: जी
2: जतोई, जी। जतोई, जी। जतोई
0: ठीक ठीक ठीक ठीक थैंक यू सदोरो भाई पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो जलाल चांडियो हलाइंदोमांव कहिड़ो अलाह अकबर वॾो ज़ुल्म कयो अथव मूंखे गाए ॿुधायो थोरो अच्छा मां इहो ॾिसां अगरि मिली वियो त ज़रूरु हलाईंदमि कैलेंडर खे बि ऐं बस खे बि
2: हा बिल्कुलु
0: बिल्कुलु महबूब खे लाहींदासीं आशिकनि खे लाहींदासीं बस मां अच्छा भला कोन लाहींदासीं बस खे हलण ॾींदासीं ठीकु
2: आहे
0: हाज़िर हाज़िर साईं हाज़िर बिल्कुलु जनाब असांखे असां हर कॉल अटेंड कंदा आहियूं पर कॾहिं कॾहिं मिस बि थी वेंदी आहे पर कोई ॻाल्हि नाहे थैंक यू सदोरो भाई पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो इनशाला तव्हां रोज़ ईंदा कयो थैंक यू सो मच थैंक यू महिरबानी बिल्कुलु जनाब हमारे साथ बहुत प्यारे से सदोरो भाई की फरमाइश पे बड़ा प्यारा सा गाना उन्होंने गाया कैलेंडर रोक तू बस के भाई जलाल चांडियो इनका गाना भी हम जरूर चलाएंगे बहुत मजे का गाना लग रहा है मैंने कभी सुना नहीं है लेकिन आज सुनूंगा तो पता चल जाएगा कि कितना अच्छा गाना है आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 03000113488 पे लेते हैं शो की एक और कॉल देखते हैं हमारे साथ लाइन शाइन पर कौन आ चुके हैं जनाब और कौन हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अस्सलाम वालेकुम हेलो वालेकुम अस्सलाम कैसा पा बिड़ो बाप बढ़िया कड़ी खचरी हुई हमरा सा मानू विड़े बस
2: मैं वाले दिस ना ओयो मना बेगर तो आए
0: चाहे
2: बेगर तो आए
0: बेगर्ज़ो बेगर्ज़ मना अच्छा अच्छा ॿियो ठीक ठाक हनी सॉरी रफ़ीक जो सभिनी सां गॾु मौजूदु आहिनि आई एम श्योर हा रफ़ीक ॿिया ॿिया ॿुधायो ठीक ठाक आहियो मज़े में आहियो गरमा गर्मी कीअं थी हले कोई लस्सी वस्सी पियो था थधो खीर करे कोई कची लस्सी पियो था या ईअं बसि घुमो था माण्हू पाण करे ॾेई बि वेंदो
2: आहे
0: बिल्कुलु मां अचण जी कोशिशि कंदोमांव इहो ॿुधायो रफ़ीक त फैमिली डे अॼु मल्हायूं था माना अॼु ख़ानदान जो आलमी ॾींहुं मल्हायूं था त ख़ानदान में कहिड़ी शयूं आहिनि जेका असांखे गॾु कंदियूं आहिनि ऐं कहिड़ी शयूं अहिड़ियूं आहिनि जेका असांखे धार कंदियूं आहिनि पाण
2: माण्हू
0: हा एग्ज़ैक्टली
2: मतिलबु जेको माण्हू नंढी दिलि जो मालिक हूंदो आहे नंढियूं नंढियूं ॻाल्हियूं जेको आहे न दिलि ते वठंदो आहे
0: हा हा हा बिल्कुलु दिलि वॾो हुजणु खपे
2: दिलि वॾो हुजणु खपे छो जो आहे त ख़ानदान हिकिड़ो ई नंढियूं नंढियूं ॻाल्हियूं अगरि दिलि ते वठी करे हिक ॿिए खां अलॻि ठाहियूं फ़ाइदो कहिड़ो यार
0: ऐं बर्दाश्त जो मादो बि वॾो हुजणु घुरिजे
2: बिल्कुलु मां जेको बर्दाश्त कंदो उहो ई कामयाब थींदो
0: हा ऐं प्यार बि मोहबत बि हुजणु घुरिजे
2: ज़िंदगी सम्झ टे ॾींहं आहे
0: हा हा बिल्कुलु असां भेण भाउर जेका हूंदा आहिनि हिते ई इन दुनिया में मिलंदासीं उन दुनिया में कोई भेण भाउ कंहिं सां बि कोन मिलंदो
2: न मिलंदो त पोइ माण्हू सिर्फ़ धार छा पोइ जॾहिं धार छंदा आहिनि त इख़्तिलाफ़ वधंदा त माण्हू हिक ॿिए सां ॻाल्हाए थो न ॿोलाए थो न तकलीफ़ पुछे थो
0: बिल्कुलु
2: पोइ नफ़रत इलाही वधनि थो मां चवंदो आहियां जेको आहे हिन ॻाल्हि खे घटि तज ॾींदो आहियां मां चवंदो आहियां जेको आहे
0: बर्दाश्त
2: कयो ऐं मतिलबु दिलि ते ॻाल्हि न वठो अगरि नंढी ॻाल्हि तव्हां सोचींदव न
0: बिल्कुलु
2: सोचींदो त वॾी थी वेंदी
0: बिल्कुलु एग्ज़ैक्टली अच्छा रफ़ीक मां गानो थो हलायां हाणे हिकु सदोरो भाई फरमाइश कई आहे जलाल चांडे जी त जेको आहे गानो हलायो कैलेंडर रोक तू बस खे जलाल चांडियो हाणे हिन बस खे रोकियूं था थोरी देरि में तव्हां कंहिंजे नाले खणणु चाहियो हिनखे
2: बस खे तो रोक न रोक असांखे पंहिंजो पसंदि ॿुधायो
0: अलाह अकबर वरी कहिड़ो
2: समन जो
0: कहिड़ो
2: दिलनि जा मालिक मौला
0: जाई हाणे त मां उहो हलाईंदुमि, मनकब हलाईंदुमि, मौला मेरा बि घर हुवे, इन जे बाद असां जलाल हलाईंदासीं। शुक्र आहे, यादि अची वियो। अली हसन बाबू नाराज़ थी विया। ओके, पारत बि हलाईंदासीं। कंहिंजे नाले ते करणु चाहियो?
2: सभिनी दोस्तनि जे नाले ऐं अब्दुला नारे जो,
0: सही सही सही,
2: हैदर नारे जो, अब्दुल वही जतोई, ऐं ॿिया जेके दोस्त ॿुधंदा जिते तव्हांजो आवाज़ वञे थो।
0: जी जी,
2: ऐं सूतली बि ॿुधी पई मुंहिंजे ख़्याल में।
0: सूतली सूतली अञा थुलो न थियो आहे सूतली? हे खीर मेरी प्यारेस पर नहीं भाई ख्यारेस
2: नहीं, खीर न तो खाए, मैं पाक बड़ा खाए।
0: अच्छा, पाक तरी तो सूतली आ गरीब।

0: जॾहिं ॿिए ॿार जे सोचण जो वक़्तु अचे त ॿ साल तूं सोचजांइ, बसि इहा ॻाल्हि कमु ईंदी।
1: जॾहिं नई माउ बणजण जो डपु हुजे त कंहिं पुराणीअ जी ॻाल्हि ॿुधो। हमल जे दौरान रत जी घटिताई खे बि नज़रअंदाज न करियो। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
2: जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गरमाइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, जुकाम, दिलि जी तकलीफ़, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलण, फालिज, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस: हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
3: तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल माँ 16 जनवरी से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर। पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान,
1: की आवाज मेरे पास मेरी प्लेलिस्ट में लगा हुआ है अभी वो गाना, अब वो कैलेंडर रोक तो बस के असांखे लहणो आ पांजे आशिक के अलावा महबूब के वो गानो अन्या लगियो पियो आ छो ता असांखे एक भाऊ फरमाइश कई सदोरो जतोई तू हलाइंदा से जरूर ताजी फरमाइश से रखें ते तमा भी असांखे फरमाइश करे सको था जनाब 03-0001-3488 असांजो नंबर आहे। जनाब बिल्कुल खानदान यानी कि फैमिली जो आलमी डी अज मल्हायो पियो वञे त असां इहो चाहींदासीं त फैमिलियन खे गॾिजी करे रखो, उन्हनि में जेका बि एरर्स ईंदा आहिनि, जेका बि तव्हांखे ॻाल्हियूं बुरी लॻंदियूं आहिनि त पंहिंजे खानदान खे पंहिंजी फैमिली खे विहारे कनि, शिकायतुनि खे दूर कयो, अगरि हुजे त पोइ ताक़त हूंदी आहे, अगरि जनाब धारदार थी वेंदा आहियूं त पोइ ताक़त बिल्कुल बि न रहंदी आहे। त असां फैमिली में फैमिली मेंबर्स हिकु ॿिए जी ताक़त हूंदा आहियूं, हिकु ॿिए जी सपोर्ट हूंदा आहियूं, त हमेशह कोशिशि कयो त फैमिलीज़ गॾिजी रहनि ऐं हमेशह ख़ुशि रहनि। वठूं था शो जी नेक्स्ट कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हैलो, अस्सलाम वालेकुम। केर था असां सभिनी सां गॾु? गुलाम मुस्तफ़ा भाई, कहां से बात करें? सखर से। ओके, शालीमार से। गुलाम मुस्तफ़ा भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं, फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास। गुलाम मुस्तफ़ा भाई क्या करते हैं आप? अच्छा माशाल्लाह, कैसे जा रही है आपकी गवर्नमेंट जॉब? अच्छा जबरदस्त जबरदस्त। ये बताएं कि हमारा शो आपको कैसा लगता है और आपने फर्स्ट टाइम हमारे साथ बात की है?
2: सर मैं आपके प्रोग्राम को डेली सुनता हूँ, मेरा प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा।
1: हाँ थैंक यू
2: सर। कोई आप अपनी समझ से कोई भी सॉन्ग सुना देना।
1: बिल्कुल, एक बड़े मजे का गाना सुनवा रहा हूँ मुझे, मैं वो मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है कि वो गाना होगा कैसा, जलाल चांडियो का है एक बड़े मजे का, तो वो आप किसका नाम कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच गुलाम मुस्तफ़ा भाई, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा आप। जी जनाब, हमारे साथ गुलाम मुस्तफ़ा भाई, बहुत कम बोलने वाले भाई हमारे साथ मौजूद थे और जनाब हम चाहते हैं कि जब आप हमारे साथ हैं थोड़ी गपशप भी करें। तो गुलाम मुस्तफ़ा भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया, फर्स्ट टाइम कॉल किया, थैंक यू। लेते हैं शुक्रिया एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी प्यारी सी बहन, कौन हमारे साथ? अनमोल। अनमोल तो वाकई अनमोल है। कैसी अनमोल भाई, ठीक है? अनमोल बहन फर्स्ट क्लास। ये बताओ,

0: थादल बनाते हैं, वही पीते हैं।
1: वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त मेरी बहन। थादल बनाए, लस्सी बनाए, बस गर्मा गर्मी को दूर होना चाहिए ताकि इंसान जो है ना सही सही सोचे और सही सही जो है काम करे, वरना तो गर्मी में तो दिमाग का बेड़ा गर्क हो जाता है, ऐसा ही है ना?
0: बिल्कुल,
1: ऐसी हो रहा है, घर से निकलो तो रास्ते में इतने सारे झगड़े हो रहे होते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले आवाम से लड़े हैं, आवाम वाले ट्रैफिक पुलिस से लड़ रहे हैं, आपस में लड़ाइयां कर रहे हैं कि कोई किसी को गाड़ी ठोक रहा है, कोई किसी को आंखें दिखा रहा है। मैं तो हैरान हो जाता हूँ कि यार इतनी गर्मा गर्मी में लोगों को लड़ने का कैसे ख्याल आ जाता है यार, एक बंदा अपनी जात से ही तंग हो जाता है। बर्दाश्त तो बिल्कुल ही खत्म हो गई है, जरा जरा टके की बर्दाश्त नहीं बची इंसान में,
0: बर्दाश्त जो है ना वो खत्म हो गई है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: गर्मी गर्मी चलती है, कोई छोटी बड़ी बात हो जाती है,
1: इग्नोर बंदा करे, इग्नोर भी कर सकते हैं। वाकई लड़ने से क्या फायदा, बपादर उन्हें कहना बपादर पान खाऊ गर्मियों में वरी हुआ ठा थी तो बाकी चाह दी दो और क्या, फिर तमाशा भी हो लोगों के सामने और फिर वीडियोस बने मोबाइल्स पर और फिर बाद में सोशल मीडिया पे अपलोड हो जाएं कि भाई पापा दरन का दा, पापा दरन का दा रहे हो मुंह में साहब, तो पो इन लाइन इंसान चाहता है तो बाबा थोड़ो थोड़ो थोड़ो तरसे हो, आई थोड़ो सबर जो मुझे रुके हो ये ना जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अनमोल आपने वाकई बहुत अनमोल बातें की है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताओ कि जो गाना प्ले करने लगा हूँ किसके नाम करना चाहते हैं आप? नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आप जलाल चांडियो सुने, बड़ा मजा आता है जलाल चांडियो साहब को सुनने का। आज आज जरूर सुनिएगा वॉल्यूम खोल के।
0: जी जी
1: जी जी
0: दूसरे की गलतियों को माफ़
1: एग्जैक्टली बहुत अच्छी बात की आपने कि भरोसा करें एक दूसरे पर, एतमाद करें, बर्दाश्त का मादा रखें और कभी किसी को हर्ट ना करें,
0: दुख ना
1: पहुंचाए,
0: दुख
1: पहुंचाएंगे
0: तो आप
1: चवंदन तो आए तो तू मुखे दुखाईंदे रब तुखे दुखाईंदो। चलें ठीक है, थैंक यू अनमोल बहन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच।
0: अच्छा आपने कहा था कि आप रात को नाइट में क्या करेंगे,
1: कौन सा वाला शो जो मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था? अच्छा डेली शो करो, डेली शो मैं बस जैसे फ्री होता हूँ ना तो फिर मैं डेली शो इंशाल्लाह जरूर करूंगा, अभी मुझे कुछ मसरूफियात हैं लाइफ में तो मैं जैसे ही होगा ना मुझे फारिग वक्त इंशाल्लाह ताला आपके लिए डेली शो रोज करूंगा।
0: ठीक है,
1: हाँ मुनज़्ज़ा हमारे साथ होती शो करती थी, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली
0: बिल्कुल।
1: थैंक यू अनमोल बहन, थैंक यू सो मच। हमारे साथ ही बहुत प्यारी सी अनमोल और अनमोल के बाद हम चलते हैं जनाब एक अदद कमर्शियल ब्रेक की जानिब। कमर्शियल ब्रेक के बाद आप और हम साथ साथ हैं, उसके बाद जलाल का गाना जरूर सुनिएगा, मैं आज प्ले करके ही रहूंगा।
2: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना, फादी मेहरान, सिंध की एक और पहचान, जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: किसानों के आलमी दिन पर सोना की जानिब से

0: कैसे हैं?
1: हेलो वो सारे आदमी खुश हैं जी। अभी हमारा सारी का जो है ना डैम आ रहा है, गंदम का डैम चला गया है, सारी के काम को लगे हुए हैं, कोई हर मारा है, कोई अंबा जी रहा है। अच्छा, अलग है मेहरबानी है।
0: मैंने हाने तो सारी खत्म थी, वरी हाने वरी सारी आ चंती हूँ
1: नसी सारे जो कमर सुनो नसी आने कर के खत्म थी आने सारे जो अंबा खड़ो सारे को हरा को बारी आ को है।
0: ओके ओके ओके ओके जाहिर शाह भाई, ये बताया था कैसा जो प्रोग्राम किया लगा दुआ
1: तमाम बेहतरीन सही माहौल बिल्कुल।

0: भावनगर पंजाब से रशीद अहमद बात कर रहा हूँ।
1: माशाल्लाह भावनगर पंजाब से जी आया नु तानू असी वेलकम कहंदे आं अपने शो विच।
0: जी बहुत शुक्रिया। कहंदे ने ना रब्बा तू राजी ते सारा जग राजी मेरा प्यारा भाई साथ ने आजी।
1: हाय मैं सदके जावां तुहाडे शेर तो मैनू बड़ा ही चंगा लगा। तुहाडा नाम की हैगा?
0: मेरा नाम रशीद अहमद है जी।
1: रशीद भाई तुसी की करदे हो?
0: मैं सुनहरे का काम कर रहा।
1: अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह थोड़ा काम कार किवें चलदा पिया?
0: फिलहाल ते रेट नु देख के लोग रात
1: नु नींद नहीं आ जाता।
0: ओ कहंदे नहीं आ रही उन्होंने पूछना
1: सोना होया बड़ा महंगा मैं चांदी ले आई।
0: चांदी भी नहीं मिल रही ना, चांदी भी 9000 रुपए।
1: अल्लाह अकबर। सोना किवें चल रहा है? शादियां ना रोकना।
0: जी थोड़ा जा शऊर आ गया लोगों दे विच। बिल्कुल शऊर आ गया कि सोना कोई जरूरी नहीं,
1: जरूरी नहीं है।
0: उसी जगह अगर तुसी एक भैंस दे दियो, एक गाय दे दियो,
1: एग्जैक्टली,
0: या तू चार बकरियां दे दियो, चलो कल नु बच्चे हरे का पी ना।
1: जी जी बिल्कुल। हां सोना हुण पिया पिया की बच्चे थोड़ी देंदा है?
0: कुछ भी नहीं देंदा,
1: कुछ भी नहीं देंदा। तो और खुदा ना खाता चोरी पै जाए तो वही लुट के ले जांदे ने।
0: हाँ जी वही चोरी कर बल्कि आप ही करो चुके जाते हैं घर वाले बेईमान हो जाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। तो जितने भी लोग सुन रहे हैं जो अपनी बच्चियों की और बच्चों की शादियां नहीं करा रहे बिकॉज ऑफ महंगा सोना, यार महंगा सोना हो गया, ये हो गया वो हो गया, तो अपन बच्चे बच्चों की शादी करें, उनको गाय भैंसे बकरियां दे दें यार, और कुछ पैसे उनके अकाउंट पर डलवा लें। जरूरी नहीं है कि आप सोना पहने।
0: बिल्कुल उनके लिए जराए आमदनी पैदा करें,
1: आम जराए आमदनी पैदा करें बिल्कुल, ताकि उनकी जिंदगी आसान हो।
0: एक चीज इस जगह पड़ी हुई है
1: हाँ।
0: तो वो उसी कीमत की है, अगर रेट बढ़ भी जाता है तो फिर में उसमें जो सुधार का वो भी तो कट जाता है,
1: वो भी तो कट जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो रशीद साहब
0: आपने टॉपिक माशाल्लाह बहुत अच्छा रखा हुआ था, और टाइम की कमी की वजह से कुछ ज्यादा बात भी नहीं कर सकूंगा।
1: हाँ नहीं नहीं जरूर आप इस पर रोशनी डालें जितनी भी आप डाल सकते हैं।
0: तो कहते हैं कि मुझे याद आ गया कि अगर होती वफा खून के रिश्तों में,
1: वाह वाह,
0: तो यूसुफ ना बिकते मिस्र के बाजारों में।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: बस ये खानदानी झगड़े जो चल रहे हैं ना
1: जी जी,
0: ये सर जमीन दौलत के चक्कर है सारे, और कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ हमारी कौम जो है, हमारे लोग जो है, वो सबर से काम नहीं लेते, एक दूसरे से बढ़ के चरण मतलब दिखाना चाहते हैं कि मैं क्या चीज हूँ।
1: बस हालांकि इंसान, हाँ हालांकि इंसान में हसद चीजों को खत्म करना चाहिए, हसद वाली चीजों को।
0: अच्छा अगर ये सोच लेना कि मैं, सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह को हम का इंतजार नहीं करते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: जो चीज हम अल्लाह को छोड़ देंगे अल्लाह ताला बेहतर बदला लेने वाला
1: और बेहतर हिसाब
0: रखेगा। अल्लाह से छोड़ देंगे उस बात को
1: जी,
0: तो फिर अल्लाह ताला ऐसा बदला लेगा कि वो बंदा खुद ब खुद ही आपके पाँव में आ पड़ेगा, बल्कि आपको भी आपके ख्याल आएगा इस बात का कि अल्लाह इसको माफ कर।
1: बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बस हम खुद जज बन जाते हैं, हम चाहते हैं कि हम फैसले हम करेंगे, तो ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला की रात बहुत बड़ी होती है, अल्लाह ताला पे छोड़ दें अपने सब काम काज और सब रिजल्ट, अल्लाह ताला बहुत बेहतर करते हैं।
0: जी मेरे साथ एक वाक्य छोटा सा पेश आया था।
1: जी जी जी।
0: मेरे एक रिश्तेदार ने इसने बहुत बड़ी ज्यादती की,
1: अच्छा
0: जुल्म के हद तक किया।
1: जी जी जी।
0: तो मैं उसी उसके बाद दिन गुजरे तो मैं सोच रहा था कि मैंने इससे बदला कैसे लेना है।
1: जी जी।
0: तो मैं असर की नमाज पढ़ने के लिए गया, तो हमारे हबीब है ना वहाँ जो नमाज पढ़ाते हैं
1: जी जी,
0: उन्होंने असर की नमाज के बाद अजीब जरूर बयान करते हैं
1: जी।
0: उन्होंने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप पे कोई जुल्म करे, ज्यादती करे, तो आप बदला ना ले, क्योंकि आप ही साथ नहीं रखते, बेशक आप ताकतवर हैं
1: और खुद जलते रहते हैं, फिर खुद अपने अपनी तबीयत खराब कर लेते हैं
2: जी,
1: अपने लिए बुरा बुरा।
0: मैं तो आप इसको अल्लाह के फर्ज कर दे कि अल्लाह ये मामला मैं तेरे मुंह करता हूँ, इसका फैसला तूने फरमाना है,
1: बेशक
0: की नमाज के बाद। तो मैंने वो सुनी तो मैंने उसी वक्त तौबा करी कि मैं बदला नहीं लूंगा,
1: बिल्कुल सही,
0: अरे अल्लाह ये मामला मैं तेरे करता हूँ, इसका फैसला तूने फरमाना है। और यकीन जानिए 7 दिन के अंदर अंदर ऐसा अल्लाह ताला ने फैसला फरमाया, ये बोल रहा हूँ खुद आकर मुझको माफी मांगी, और मैं उनकी हालत देख के ये कर रहा था कि अल्लाह इसको माफ
1: फरमा,
0: मैंने इसको माफ किया, मैं भी माफ कर।
1: क्या बात है, क्या बात है, आपका बड़ा दिल है, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। और इसी तरह हर इंसान को होना चाहिए कि जनाब अपने जो फैसले वो अल्लाह पे छोड़ दें, आप अगर बदला लेने की ताकत भी रखते تب بھی اللہ پہ چھوڑ دیں تو پھر اللہ بہت بہتر.
0: آپ کا پروگرام مجھے سنانے کے لیے میرے بہت پیارے بھائی کے گھر میں فراز علی
1: اچھا
0: وہ سنا رہے ہیں.
1: کیا بات ہے فراز بھائی, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں اتنی دور پہنچا دیا.
0: کیا بات, یہ اپنے ریڈیو سیٹ کے سامنے موبائل رکھ کے نا مجھے سناتے ہیں اور میں سنتا رہا.
1: گریٹ علی بھائی, گریٹ گریٹ.
0: امام دین بھائی ہیں,
2: چھوڑ دیں آپ,
0: یہ جوار بھائی ہیں, جمال دین ببرو, جمال دین سوری جمال دین بھائی, اور یہ اپنا عجیب اللہ ہے.
1: جی جی جی,
0: آج تک یہ تمام میرے بھائی بہت اچھے ہیں, ان کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں. اقبال بھائی ہیں پلپوٹو,
1: بالکل بالکل, سارے ماشاء اللہ بہت اچھے انسان ہیں, آپ بھی بہت اچھے انسان ہیں.
0: جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سب کو سلام کہوں گا اور آپ کے لیے خوبصورت دعا کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ حافظ, پاکستان
1: ہمیشہ زندہ باد. تھینک یو سو مچ میرے پیارے سے بھائی, تھینک یو. رشید بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے بھاول نگر سے, آئی تھنک, اور جناب جن لوگوں نے ان کو ہم تک پہنچایا, ہم سے بات کروائی, بہت شکریہ. اور جناب فوراً شو کو وائنڈ اپ کرنے کا ٹائم آن پہنچا ہے. تو جناب ہم آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فیملیز تبھی بنتی ہیں جب فیملیز میں اتفاق ہوتا ہے, جب پیار ہوتا ہے, جب حسد نہیں ہوتا, جب اپنائیت ہوتی ہے. تو موجودہ دور میں خاندانوں کے دیرینہ روایات کو برقرار رکھنے, فیملیز کے درمیان اتحاد, اتفاق, یگانگت, بھائی چارے کی فضا کے فروغ, ایک دوسرے کے دکھ میں شراکت, خاندانوں کی اہمیت اور افادیت اور اس کی ضرورت سمیت متعلقہ امور پر تفصیلی روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے, تفصیلی محبت کرنے کی ضرورت ہے, تفصیلی چیزوں کو ریڈ کرنے کی ضرورت ہے, لرن کرنے کی ضرورت ہے, تبھی ہم فیملیز کو اچھے طریقے سے ڈیولپ کر پائیں گے, فیملیز میں اچھے طریقے سے پیار محبت کر پائیں گے. تو جناب اشفاق نیازی آپ سے چاہتا ہے اجازت, ہمیشہ خوش رہیں, ہنستے مسکراتے رہیں اور اپنے خاندانوں میں ایک دوسرے کی عزت کریں, ایک دوسرے کی عزت کروائیں اور بہت سا پیار لے کر آئیں. تھینک یو آپ تمام لوگوں کا, اسپیشلی ہمارے لاسٹ کالر رشید بھائی کا, جنہوں نے ہمیں اتنی دور سے کیا تھا اور ہمارے شو میں بہت اچھی بات کی اور آپ کو چھوٹی سی کہانی بھی سنائی اپنی آپ بھی تھی. تو انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے کو پھر ملتے ہیں, تب تک کے لیے ٹیک کیئر, گڈ بائے, ہیو اے نائس ڈے. اور صدور و جتوئی کی فرمائش پہ ہم گانا پلے کر چکے ہیں, کیلنڈر روک تو بس کے جلال چانڈیو, اس گانے کو سنیے گا. اشفاق نیازی کو دیجیے گا اجازت, رکھیے اپنا بہت سارا خیال, اللہ نگہبان.

0: ਤੋਖੇ ਗੋਲ ਮਰਾ ਚੋ ਦੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮਿਲੇ ਰੋਦਤੇ
1: बॉल रेस्क्यू इसमें है बायो प्रोटीन की बालों के खाली हिस्सों में प्रोटीन फिल करके हेयर फॉल कम करे 98% तक अब बाल देखें दो गुना घने स्ट्रॉन्ग नो हेयर फॉल वरी पाकिस्तान बेस्ट हेयर फॉल सॉल्यूशन

हाणे हैरत अंगेज़ जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिलि जी तकलीफ़ अध मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलणु फालिज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं बरोज जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327 99

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध

महोदय रिटायर्ड अगुणो चीफ सेक्रेटरी रिजवान मेमरसन पब्लिक सर्विस कमीशन जो वक्ती चेयरमैन मुकरर नए चेयरमैन की मुकररी तई रिजवान मेमण कमीशन के चेयरमैन तौर कम कंदो रहंदो वडे वजीर बाद अली शाह रिजवान मेमण की मुकररी की मंजूरी दई छी नोटिफिकेशन जारी थियण का इम्कान रिजवान मेमण सिंह जो चीफ सेक्रेटरी सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू समेत बेन उहदन से रही चुको है।

अमरीका ईरान विच में जंग के खात्मे लाए मायदो थियण जा इम्कान वधी विया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के रवैये में चीन के दौरे बाद वड़ी तब्दीली। पाकिस्तान की दरख्वास्त ईरान से जंग बंदी करण की भी तस्दीक करे छी। वापसी ते जहाज में साफियत से गलाइंदे डोनाल्ड ट्रंप चाहता मां जंग बंदी जे हक में न हुयस। पाकिस्तानी क्यादत शानदार है, असा जंग बंदी वारो फैसलो पाकिस्तान जे चवण ते एक फेवर तौर कयो। ईरानी तजवीजू मुकम्मल तौर ते कबूल जोगियूं नाहिन। 20 सालन ताईं एटमी प्रोग्राम मुअत्तल करण वारी तजवीज सुठी आहे। यूरेनियम जे रचाव बाबत लेवल जी ज़मानत तसली जोगी नाहे। आपना हुर्मस बाबत कंहिं जी मदद जी ज़रूरत नाहे। नई चीनी सदर खे कंहिं मदद बाबति चयो आहे। कुछ ढीन में ईरान का तेल वठंदड़ चीनी कंपनियों तां पाबंदी हटाने जो फैसलो कयो वेंदो। ताइवान बाबत अमरीकी पॉलिसी तब्दील नाहे थी। ताइवान के हथियार देण जी मंजूरी नाहे डिनी। थी सके तो मंजूरी दिया या न भी दिया। चीन सा तारीखी व्यापारी माहिदा थिया हैं जैं जो अमरीका के फायदो थींदो। पाकिस्तान जी सालिसी में अमरीका सा गालियों नाकाम नाहन थियूं। मुश्किल मरहले मां गुजरी रही आहिन। जंग की शुरुआत भी ईरान न कई हुई, रुगो पेंजो दिफा कयो। जंग बंदी बरकरार रखने की कोशिश करे रहा हूं। अपना हुर्मुस में रंडकन जो जिम्मेवार भी ईरान ना है। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे ईरानी पटेई वजीर अब्बास राक्षी चयो आए त असा वट अमरीका ते इतबार करण जो भी को जवाज ना है। माहिदे का पहरी सब शयू वाजे थियण घुर्जन। चीन असाजो स्ट्रेटेजिक भाईवार आए। अमरीका सा गालियन में यूरेनियम जो रचाव डेढ लाख जो शिकार है। आपना हुर्मुस अमरीकी जारियत की मुकम्मल खात्मे बाद ही खुली सको। आपना हुर्मुस इन वक्त भी जंग में मुलविस मिलन का सिवाय बेन लाए खुलल है। इस्तेमाल नतीजा न रीद। ईरान के एटमी प्रोग्राम समेत समूर तकरार जो हल मुशावरत से निकरण घुर्जे। मसले जो हल तकड़ो हल अमरीका ईरान ए बेन मुल्क के वफाद में है। चीनी पढ़ई वजारत है तकरार के निबेरे लाए गालियन ए राबतन वो सिलसिलो भी जल्द बहाल थियण घुर्जे। ईरान जंग शुरू ही न थियण घुर्जे। हा जंग जो जारी रहने कें भी मफाद में न होंद। चीन सदाई गालियन ए सिफातकारी के ही हथी डी है।

0: सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी जा सिंध हुकूमत ते संगीन इल्ज़ाम। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो नालो तब्दील करण जो मुतालबो। अली खुर्शीदी चयो त सिंध जे हर खाते में करप्शन आहे, को भी कम पैसन का सिवा न थी रहियो आहे। असिस्टेंट कमिश्नर भी मुकररी लाइ 3-7 करोड़ ताईं ॾे थो। सोलर प्रोजेक्ट में वॾी करप्शन थी, अवाम खे फुरियो वियो। अरबनि रुपयनि जी कणक कुआ खाई वञनि था, वज़ीर चवनि था चोरी न आहे थी। सिंधू दरिया ते तामीर थींदड़ कश्मोर कंध कोट पुल ठहण दौरान ढही रही आहे। कराची जो अमन ॾिसो, घरू वज़ीर खे तमगा ॾिना पिया वञनि। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो कम रुगो पैसा वठी नौकरी ॾियण रहिजी वियो आहे। मखसूस साहब जो पुट पास ऐं सिंध जो अवाम फेल थी रहियो आहे। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जा अमलदार सरेआम रिश्वत वठी रहिया आहिनि। सिंध जे वसीलनि खे खाईंदड़ कुअनि खे पकड़ण बदिरां बचायो पियो वञे।
1: सनक्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड किसान।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: किसानों के आलमी दिन पर सोना की जानिब से

0: सिहतअंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अव्हांजे पंहिंजे शहर सकरण में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ जुकाम दिल जी तकलीफ़ अध मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलणु फालिज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं पर जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-768।
1: हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
1: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल
1: आप सुन रहे हैं
2: DAFM 88
1: नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: हिकिड़ो ॾींहुं मूंखे यादि आहे त ॿ ॾींहं टे ॾींहं अॻु में तमामु घणी गर्मी थी, माना ईअं सम्झो सूमरु वारे ॾींहुं, जुमो आहे सूमरु वारे ॾींहुं तमामु घणी गर्मी थी। त मूं इस्तेमालु छा कयो आहे, चांवर उन में मुङ जी दाल पच विझी उहा चांवर ठाहियो, मां दही विझ इहो खाधो मंझंदि जो। गर्मी वजह छा आहे, ॾिसो गर्मी तमामु घणी आहे, मानी गोश्त मुर्गियूं हीअ सभु छा आहे गर्माइश, ॿाहिरि गर्मी अंदरि में तव्हां गर्मी विझोसि त तव्हांजी तबियत ख़राबु थींदी। इन करे इन मौसमनि में हल्के खाधो पीतो तमामु बहितरीन शइ आहे। ॿाहिरि गर्मी आहे एतिरी तव्हां ख़ुराक इस्तेमालु कयो, भई चांवर जेका एतिरा कोन्हनि खे, इहे हज़म जल्दी थींदा आहिनि, त उहा त मादे खे बि नुक़सानु न थींदो, गर्मी बि न लॻंदी ऐं पेट बि भरिजी वेंदो। त इहा शयूं अव्हां जे लाइ बहितरनि, अव्हां इहे शयूं इस्तेमालु करे सघो था। ईअं नाहे त को पैसे वारो ग़रीब बाबा, पंहिंजी सिहत पंहिंजी आहे, पंहिंजो पेट पंहिंजो आहे, पाण खाए पाण खे बीमार करण खां बहितर आहे त पाण हिन शयुनि खे छॾे ॾियूंसि, पंहिंजी लाइफ खे पंहिंजी ज़िंदगी खे सही गुज़ारियूं। ईअं त पाण इहा इस्तेमालु करे के डॉक्टर वटि वञूं, हिन खां बहितर आहे असां इहे शयूं इस्तेमालु कयूं, तव्हां डॉक्टर वटि वञण जी ज़रूरत न पए। अच्छा समीन, राह में तकलीफ़ आहे, बीमारी आहे, जीअं का ब्लड प्रेशर आहे, शुगर आहे, या फालिज आहे, ज़ख़म आहिनि पुराणा ख़तमु न थियनि, ख़ारिश आहे, रत गड़ियूं आहिनि, या मादे जो का तकलीफ़ आहे, मादे जो को मसलो आहे, त उन्हनि सभिनी जो इलाजु असांजी क्लिनिक ते थी सघेसि थो। उन खां अलावा बे औलाद वारा जेका आहिनि उन्हनि खे त मां हींअर एडवाइस कंदुसि त तव्हां परेशान हरगिज़ न थियो, या डॉक्टर डॉक्टरनि जा चकर अव्हां न कयो। अव्हां जे लाइ बहितरीन इलाजु जेको आहे उहो होम्योपैथिक में आहे। उन जी वजह छा आहे त मां पाण परेशान होसि हिन जे बारे में, छो त असां वटि पेशंट आहिनि सही बे औलाद वारा। उन्हनि खे मूं छा कयो आहे त उन्हनि खे मूं सिर्फ़ु इहा चई तव्हां जेके तकलीफ़ूं मूंखे लिखाए छॾियो, दवा इलाजु मां न कंदुसि, मूं हुननि खे जवाबु ॾिनो ऐं लिस्ट मूं वटि तमामु घणी थी वियो त मां परेशान थियो त मूंखे हाणे इन जे बारे में पढ़णो लाज़मी आहे। त मूं इन जे बारे में स्टडी कई त असांजा होम्योपैथिक वारा दवाऊं ॾिसी मां पाण परेशान थी वियोसि त जंहिं औरत सां जेको मसइलो आहे उनजी दवा त असां वटि मौजूदु आहे, मां पेशंट खे छो न पियो ॾियां। त इन मुताबिक़ अवां जेका बे औलाद वारा आहियो, मर्द तोड़े औरत पई, उन्हनि ॿिन्हिनि जो इलाजु थी सघे थो। ऐं जेॾीमहिल हिन में खोड़ अहिड़ी शयूं आहिनि जेका असांजा डॉक्टर्स ऐं डॉक्टरनियूं असांखे ॿुधाइनि कोन थियूं, त अॼोको प्रोग्राम में मुंहिंजी कोशिशि रहंदी त उन्हनि नंढियुनि नंढियुनि शयुनि खे मां ॿुधायां, छो त वॾी शयूं FM ते ॿुधाइणु मज़ो नथो अचे। त इन करे कुझु अहिड़ी शयूं मां अव्हांखे ॿुधायां थो जेका अव्हां में ज़रूरु कंहिं न कंहिं इहा शइ हूंदसि। मर्द आहे उन में छा मूंखे थींदो आहे त जरासीम चवंदा आहिनि, जरासीम कढियोसि पासे में, जरासीम ज़रूरत ई कान्हे का, छो त जरासीम वारी ॻाल्हियूं सिर्फ़ु अव्हांखे परेशान करण जी। इन खां अलावा बि खोड़ शयूं आहिनि जंहिंजी कमी सां औलादु नथो थिए। लेडीज़ आहे, लेडीज़ में छा चवंदा आहिनि, मां लेडी जेका डॉक्टरनी आहिनि बाबा माहवारी सही कोन्हे, माहवारी खे तव्हां छॾे ॾियो। इन खां अलावा बि थी शयूं आहिनि जेके असांखे सही करणियूं आहिनि त औलाद थी सघे। माहवारी सही थींदी पोइ बि न थींदी, ऐं मर्द जा जरासीम सही थींदा पोइ बि न थींदी औलाद। इन में खोड़ ॿिया शयूं आहिनि जेका असांखे होम्योपैथिक वारनि जी जेॾीमहिल असां किताबु खोलियोसीं असां पाण चया थी वियासीं यार इहा शयुनि जो बि ॾिसणो आहे या भई खोड़ पेशंट मूं वटि उन शयुनि जा पिया हुआ यार, हीअ किताबु चवे पई इहा पेशंट में हीअ शइ पूरी आहिनि त इन जी कमी आहे जंहिंजे करे औलाद न पई थिए। त असां वटि उहा पेशंट मौजूदु आहिनि, असां हाणे उन्हनि सभिनी खे चवंदासीं तव्हां परेशान न थियो, पंहिंजी टेस्टूं रिपोर्ट्स सां गॾु मूं वटि अचो। इनशाला असां डॉक्टरनि जो कमु इहो थींदो त जेका कमी जंहिंमें बि आहे असां उन कमीअ खे पूरो कंदासूं, छो त अव्हांखे ख़बर आहे शिफ़ा ॾियण जी ज़ात अलाह जी आहे, औलाद ॾियण जी ज़ात अलाह जी आहे, पोइ छोकिरो ॾे छोकिरी ॾे उहा उन जो कमु आहे। असांजो कमु ऐं अव्हांजो कमु सिर्फ़ु इहो ई आहे हीलो वसीलो। हीलो वसीलो छा आहे त जेका जंहिंमें कमी आहे उहो पूरो करणु, दवाऊं ॾियणु असांजो कमु आहे, खाधे इस्तेमालु करणु अव्हांजो कमु आहे, पोइ जेॾीमहिल नसीब थियो अची पवंदो औलाद। बाक़ी परेशान थियो अलाह इनशाला अव्हां ज़रूरु ख़ुशिखबरी ॿुधंदव। असांजे प्रोग्राम में कुझु ॻाल्हियूं गर्मी जे हवाले सां हुयूं, कुझु अव्हांजी बे औलादी जे हवाले सां कुझु शयूं मूं रखियूं अवे साम्हूं, ऐं उन खां अलावा पेशंट जेका न असां वटि जेकर ईंदा आहिनि OPD में हुन पासे सकण वारी क्लिनिक ते आया हुआ, हाणे उहे हेॾा ईंदा त उन सकण वारी क्लिनिक ते पेशंट जो जेको रुझान हो उहो माशाला तमामु बहितरीन हो। OPD माशाला तमामु सुठी हुई असांजी, ऐं उन खां अलावा केस असां वटि तमामु एतिरा केस हुआ त एलोपैथिक वारा जेका दवाऊं उन्हनि खां बस थी वई, ऐं असांजी होम्योपैथिक वारी दवाऊं उन्हनि खे तमामु घणो बहितरीन रिज़ल्ट ॾिनो। उन में वजह छा आहे त असांजी होम्योपैथिक जी फस्ट में फस्ट प्योरिटी, माना फस्ट में फस्ट उनजो चवणु इहो आहे सिहत, सिहत ज़िंदगी ख़ुशहाल, सिहत ख़ुशहाल, पेशंट ख़ुशहाल, होम्योपैथिक ख़ुशहाल। सभिनी खां पहिरियों उनजो इहो हूंदो आहे त इहा कुदरती इलाजु आहे, कुदरती तरीक़े सां दवाऊं ठहंदियूं आहिनि, कुदरती शयुनि खां दवाऊं ठहंदियूं आहिनि। इन करे इन में साइड इफेक्ट नुकसान वाली का गाल आहे को इन के तमा जहन में करी छदो बियो ये चोनान त असा जी पहरी प्रायोरिटी या है त असा जी पेशेंट जको उन के सेहत थे उनजी खुशहाली थे सेहतमंद थे पेशेंट तो उन ला अमा परेशान आते होम्योपैथिक जो सबनी का पहरी पहरी किरदार यो या है त पेशेंट जी सेहत बहाल थे सेहत बहाल थी त उ बीमारियों पाने पान गुम थी वेती ऐं सिहत बहाल करण जे लाइ असां वटि जेका मेडिसन्स आहिनि दवाऊं 100% रिज़ल्ट वारियूं आहिनि कंहिं बि साइड इफेक्ट्स खां पाक कनि त अवां परेशान नथा थी सघो होम्योपैथिक जी दवाउनि खां अव्हां खे इनशाला फ़ाइदो ज़रूरु मिलंदो बहरहाल सुभाणे छंछरु वरी आचर आहे ॿई ॾींहं असां फ्री रखियो आहे चेकअप जेको असां रखंदा आहियूं ऐं उन खां अलावा जेको फीस आहे मशीन जी उहा असां अधु कंदा आहियूं हर छंछरु ऐं आचर इहो असांजो रूट जेको हले पियो बाक़ी जेका आहे हाणे हेॾां शिफ्टिंग थी आहे त इन में थी सघे असां हीउ छंछरु ऐं आचर फ्री चेकअप वारो आहे इहो रुझान असांजो ख़तमु थी सघे थो उन जी वजह आहे त कुझु मामलात अहिड़ा आहिनि त जंहिंजे करे असांखे छंछरु ऐं आचर फ्री चेकअप असांखे बंदि करिणो पवंदो बहरहाल इनशाला असांजी टीम जेका आहे उहा इन कम ते लॻल आहे त इहा छंछरु आचर जेका असांजो यको हले ई पियो इन खे बंदि न कयूं पाकर दुआ कयो त इहो असांजो कमु थी बंदि त हेॾां जा जेका मामला अथनि जेका हालात उन्हनि खे ज़रूरु ॾिसणो कुझु शयूं अहिड़ियूं आहिनि जेका पर्सनल आहिनि जंहिंजे बारे में असां नथा चई सघूं छो त कंहिंजी दिलि आज़ारी थी सघे थी इन जे करे असांखे छंछरु ऐं आचर खे असांखे फ्री चेकअप खे हटाइणो थो पए बाक़ी मां मुंहिंजी पंहिंजी पूरी कोशिशि कंदुसि त इहा छंछरु आचर जेको मुंहिंजो फ्री हले पियो 4 साल खां इहो हले इन खे मां बंदि न कंदुसि बाक़ी अलाह मालिक आहे
1: जीअं समीन अवां ॿुधो पिया जीअं सकनि नवाब शाह एफएम 90.8 जे लाइव स्टूडियो मां प्रोग्राम सिहत जो राज़ होम्योपैथिक सां जीअं समीन डॉक्टर साहिब जी हाणे क्लिनिक आहे हा जी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक जे नाले सां डॉक्टर साहिब जी क्लिनिक जी एड्रेस स्टेशन रोड सकरन हा जी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकरन डॉक्टर साहिब जी वेहण जी टाइमिंग सुबुह जो 9 खां शाम 6 वॻे ताईं जीअं समीन डॉक्टर साहब सुबुह जो 9 खां शाम 6 वॻे ते मौजूदु हूंदा क्लिनिक ते ऐं जुमे वारे ॾींहुं बि काई मोकल कान्हे का जुमे वारे ॾींहुं बि डॉक्टर साहब मंझंदि 12 वॻे ताईं मौजूदु हूंदा हर छंछरु आचर ते बि जीअं डॉक्टर साहब मौजूदु हूंदा आहिनि ईअं ई मौजूदु हूंदा यानी सुबुह जो 9 खां शाम 6 वॻे ताईं पर हिन मां इहो नोट कराईंदो हलां त डॉक्टर साहब वटि मेडिकल स्टोर ॿाहिरि लॻियल आहे उहो डॉक्टर साहब जी क्लिनिक जी निशानी आहे उतां ई नंढिड़ो दरवाज़ो आहे एॾो नंढो त कोन्हे मतिलबु मेडिकल स्टोर सां गॾो गॾु साॼे पासे बि मेडिकल स्टोर आहे खाॿे पासे बि मेडिकल स्टोर आहे अंदरि डॉक्टर साहिब ॾे क्लिनिक जो दरवाज़ो आहे ॿाहिरि बोर्ड हूंदो यानी सुभाणे त न हूंदो पर आईंदा ॾींहंनि में बोर्ड मौजूदु हूंदो ऐं डॉक्टर साहिब ॾे तव्हां कॉल करे वधीक मालूमात वठी सघो था सामिन छंछरु आचर ते जेको सकरण में पैथिक क्लिनिक ते फ्री चेकअप हूंदो उहो हिते न हूंदो छो जो क्लिनिक स्विच कई वई आहे उते अजय समीन नई क्लिनिक नओ सेटअप आहे त उते जेको आहे त फ्री चेकअप जो फ़िलहालु कोई सिस्टम कोन्हे आईंदा हली अॻिते इन बारे में डिस्कस करे ऐं पोइ सोचियो वेंदो समीन डॉक्टर साहब अव्हांजे लाइ फ्री ॾींहुं ज़रूरु रखंदा आहिनि त उन बारे में सोचियो ज़रूरु वेंदो पर हिन वक़्तु जेको सुभाणे छंछरु आचर आहे उन में कोई फ्री चेकअप कोन्हे को तव्हां ईंदा पंहिंजो चेकअप फीस ॾेई पंहिंजो इलाजु कराईंदा जीअं समीन होम्योपैथिक तरीक़े इलाज में पंहिंजो इलाजु करायो पाण खे सिहतमंद बणायो

0: कंदुसि इलाज छो न कंदुसि इलाज बाक़ी सफ़ा एमरजेंसी आहे त उहा असांजा को बि डॉक्टर्स एमरजेंसी न खणंदा आहिनि उहो मोकिलींदा आहिनि हस्पताल या सकरण या नवाबशाह त अवां खे एमरजेंसी जे लाइ परेशान न थियो सकरण वञो या नवाबशाह अस्पताल वञो सिधो आसान कमु आहे बाक़ी जेका तकलीफ़ आहे उन जे लाइ इलाज जे लाइ अवां अची सघो था उन में का बि क़िस्म जी बीमारी आहे सभिनी जो इलाज अलहमदिल्ला असांजी क्लिनिक ते मौजूदु आहे परेशान थियण जी ज़रूरत कान्हे का सिर्फ़ु इहो मसिलो आहे त अवां सोचियो सोचियो त असां कॾहिं वञूं सिर्फ़ु इहो ई मसिलो आहे ॿियो मसिलो आहे ई कोन
1: जीअं समीन अॼु असांजो जेको प्रोग्राम हो अव्हांखे आगाही ॾियण जो हो त डॉक्टर साहिब जी क्लिनिक जेका हिन वक़्तु आहे स्टेशन रोड ते आहे हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक जे नाले सां उहो साॻी क्लिनिक साॻियो ई इलाजु थींदो होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां हूंदो अञा बि सुठे तरीक़े सां तव्हांजो इलाजु कयो वेंदो हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकरण ते मोबाइल नंबर 0 2 87 89 84 700 63 ॿुड़ी टे ॿ सत अठ नव अठ चारि सत छह टे इहो डॉक्टर साहिब जो मोबाइल नंबर आहे इन ते तव्हां डॉक्टर साहिब खां मालूमात वठी सघो था डॉक्टर साहिब खां पुछा गछ करे सघो था क्लिनिक ते अची पंहिंजो इलाज कराए सघो था डॉक्टर साहिब कॉल तरफ़ हलूं था केरु असां सां गॾु मौजूदु आहिनि किथां खां अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जीअं तव्हां केरु ॻाल्हायो डॉक्टर साहिब लाइ तव्हां किथां ईंदव अच्छा नवाबशाह दलेल देरे खां ईंदव न तव्हां दलेल देरे खां ईंदव न दा दलेल देर खाईंदो तव्हां नवाबशाह मोड़ ते लहिजो उतां खां पंधु हलियो अचिजो फाटको किथे रहियो नवाबशाह मोड़ किथे रहियो भाउ इहो फाटको आहे न तव्हां इते छो था लहो तव्हां नवाबशाह मोड़ ते अची लहो न हा नवाबशाह मोड़ वारो जेको स्टोर आहे न हुसैन वारो इहो स्टेशन रोड ते सिधो अचे थो न जेको थोरो ई अॻियां ईंदो साॼे पासे ते जी हा कुरेशी जेको रोड वञे थो इन ई रोड ते आहे थोरो ई अॻियां ईंदव न उते बशीर टांगे वारे जो दुकानु अथव हुनजे साम्हूं डॉक्टर साहिब जी क्लिनिक आहे हा बशीर टांगे वारे जो दुकानु आहे लोह जो बशीर जे साम्हूं बिल्कुलु ठीकु आहे सुभाणे हिते अची सघो था जीअं असां अदे असांखां एड्रेस पुछी मां असां तव्हांखे एड्रेस ॿुधाईंदा हलूं स्टेशन रोड ते हाजी इनायत क्लिनिक जो कंहिंखां बि तव्हां पुछा कराईंदो त पुराणी क्लिनिक आहे नई कान्हे का पर इहो जो कुझु वक़्तु बंदि हुई ऐं बाक़ी क्लिनिक पुराणी आहे रक्षण वारा सुञाणनि था ऐं हर माण्हू सुञाणे थो वधीक बशीर टांगे वारो जेको मशहूरु मारूफ़ आहे स्टेशन रोड ते हुनजे साम्हूं डॉक्टर साहिब जी क्लिनिक आहे जी डॉक्टर साहिबु तव्हांजो पैगाम चवंदो असांजे सामान जे लाइ
0: बिल्कुलु पैगाम आख़िर में असां इहो ॾींदासीं अवां पंहिंजी सिहत जो ख़्यालु रखो सिहत आहे हर शइ आहे ठीकु आहे इहा ॻाल्हि त थी वई पर सिहत असां कीअं रखूं त उन जे लाइ असां पंहिंजो प्रोग्राम कंदा रहंदा आहियूं त उन प्रोग्राम में हर मौसम जी तब्दीली जे हवाले सां अवां ॾींदा रहंदा आहियूं हर ॻाल्हि अव्हांखे सम्झाईंदा अथऊं त हिन मौसम में छा कबो हिन मौसम में छा कबो उन्हनि शयुनि जे बारे में असां अव्हांखे ॿुधाईंदा रहंदा आहियूं त उन जे लाइ अवां प्रोग्राम असांजा ज़रूरु ॿुधंदा कयो प्रोग्राम असांजो ॿुधंदा हो त उन सां अव्हांखे ज़रूरु फ़ाइदो थींदो अव्हांजी का बीमारी आहे का तकलीफ़ आहे उनजो इलाज बि असांजी कोशिशि रहंदी आहे त प्रोग्राम में का बीमारी जे हवाले सां अव्हांखे इंफॉर्मेशन बि ॿुधायो कयूं त हिन बीमारी में इहा तकलीफ़ूं थींदियूं आहिनि ऐं उन में इहा शयूं इस्तेमालु कबियूं इहा शयूं इस्तेमालु इहे सभु शयूं असांजे प्रोग्राम में हर टॉपिक सां गॾु इहे शयूं थींदियूं आहिनि उन खां अलावा का बीमारी आहे का तकलीफ़ आहे अव्हां कॉल करे बि असांखां मालूमात वठी सघोसि था इलाज होम्योपैथिक कराइणु चाहियो था त नवाब शाहजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकरण इहा असांजी क्लिनिक हाणे हेॾां अची वई आहे त कुझु ॾींहं असांखे लॻंदासीं त असांखे सॼे चारि साल में इहो यादि आहे सकरण होम्योपैथिक क्लिनिक शेरवाणी किरिया मैरापुर रोड सकरण हाणे असांखे हिकिड़ो वॾो ॾींहुं लॻंदो इहा यादि करण में त हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक शेरवाणी किरिया मैरापुर रोड सकरण सामिन प्रोग्राम जो टाइम थिए पियो ख़तमु अव्हांखे का सुवाल पुछणो हुजे का शइ पुछणी हुजे एड्रेस जो पुछणो हुजे त अव्हां कॉल करे मालूमात वठी सघो था सुभाणे

0: अचो पाया तब का परेशानी थे पी अस कॉल कर मालूम वी सोस फिलहाल अस इजाजत अलाने के बाद
1: जी असमिन असा गड हुआ सकरण जहाँ मशहूर मारूफ होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान होम्योपैथिक कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह साहब वापस आए हैं।

0: डॉक्टर साहब हर बीमारी जो माहिर मशहूर डॉक्टर है तवा होम्योपैथिक तरीका इलाज सा पेंजो इलाज कराए सको था ए डॉक्टर साहब का दवा वठी सको था सामे वक्त जो एहसास प्रोग्राम से जी गाल जो भी वक्त पहुंचे तो पेंजो पुजानी थे जरे भी दुआलात खणो पेंजे मेजबान सलीम अहमद सरगान के दौर में जरूर याद रखजो जिंदगी अगर साथ रेनो बे प्रोग्राम में उदस अवा सा गद देसी मुखे दिदा इजाजत सदाई गद अल्लाह वाही अलल गेबान जेडा पेर तेडा खैरो खैर
1: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के रवैये में चीन के दौरे बाद वही तब्दीली। पाकिस्तान की दरख्वास्त ईरान से जंग बंदी करने की भी तस्दीक कर छी। बीजिंग में वापसी के जहाज में साफियन से ऐसे डोनाल्ड ट्रंप जंग बंदी के हक में न हुयस। पाकिस्तानी क्यादत शानदार है। असा जंग बंदी वो फैसलो पाकिस्तान के चवण से एक फेवर तौर किया। ईरानी तजवीजू मुकम्मल तौर से कबूल जोगियो ना आन। 20 साल तीन एटमी प्रोग्राम मुअतल करने वाली तजवीज सुठी है। यूरेनियम के रचाव बाबत लेवल की जमानत तसली जोगी ना है। आबराए हुर्मुज बाबत कें मदद की जरूरत ना है। नई चीनी सदर के कें मदद बाबत है कुछ डी में ईरान का तेल वठंदड़ चीनी कंपनियों तां पाबंदी हटाने जो फैसलो कयो वेंदो। ताइवान बाबत अमरीकी पॉलिसी तब्दील ना है थी। ताइवान के हथियार देने की मंजूरी ना है दिनी। थी सके तो मंजूरी दिया या न भी दिया। चीन सा तारीखी व्यापारी माहिदा थिया हैं जो अमरीका के फायदो थींदो।
2: برای هر دو سناریو آماده ایم، یا به میدان مبارزه برمیگردیم، یا به جنگ برمیگردیم، یا به مذاکره برمیگردیم، یا مذاکره میز مذاکره برمیگردیم و مذاکره میکنیم و راه دیپلماسی رو پیش میگیریم و به میز دیپلماسی برمیگردیم. ما برای هر دو آماده ایم و هیچ فرقی نداره برای ما، بستگی داره که طرف مقابلمون چی رو انتخاب کنه.
1: पाकिस्तान की सालिसी में अमरीका से गाल नाकाम नाइन थी। मुश्किल मरहले में गुजरी रहन। जंग की शुरुआत भी ईरान न कई हुई, रुगो पेंो दिफा कर जंग बंदी बरकरार रखने की कोशिश कर रहा हूं। आपदा हरमुस में रंडकन जो जिम्मेवार भी ईरान ना है। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कद ईरानी परदेही वजीर अब्बास राखची है असावट अमरीका से एतबार करण जो को भी जवाज ना है। माहिदे का पैर सब शाज थुर्जन। चीन असो स्ट्रेटेजिक भाईवार है। अमरीका से गाल में यूरेनियम जो रचाव डेढ़ लाख जो शिकार है। आपदा हरमुस अमरीकी जारी की मुकम्मल खात्मे बाद ही खुरी सो। अपना हरमुस इन वक्त भी जंग में मुलविस विलन का सिवाय बेन लाए खुलेल है। नतीजा न डो। ईरान जेटमी प्रोग्राम समेत समूर तकरार हल मुशावरत से निकरण घुर्ज। मसले जो हल तकड़ो हल अमरीका ईरान ए बन मुल्क के मफाद में है। चीनी परदेही वजारत है तकरार के निपेरे लाए गाल राबते वो सिलसिलो भी जल्द बहाल थे घुर्ज। ईरान जंग शुरू ही न थियण घुर्ज। हाँ, जंग जो जारी रहन कें भी मफाद में न हों। चीन सदाई गाल सिफारत करी के ही हथी डी है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी बलोचिस्तान के 11 तरक्याती मनसूबों को इफ्तताह कर छो। बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी सदाई अवाम दोस्त सियासत करण से गड मनसूबा दिना है। मुल्क में अमीर तोड़े गरीब लाए सेहत जो एक निजाम होजन घुर्जे। खिते समय दुनिया में मुश्किल सबब पाकिस्तान में भी परेशानी है। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी जा सिंध हुकूमत से संगीन इल्जाम। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो नालो तब्दील करने जो मुतालबो। अली खुर्शीदी सिंध के हर खाते में करप्शन है। को भी कम पैसों का सिवा न थी रो है। असिस्टेंट कमिश्नर भी मुकररी लाए 3-7 करोड़ ताई दे थो। सोलर प्रोजेक्ट में वही करप्शन थी अवाम के फुरियो वो अरबें रुपये की कणक कूआ खाई वन था। वजीर चवन था चोरी ना थी। सिंधु दरिया से ताबीर थन्दड़ कश्मोर कंद कोट पुल ठाण दौरान रही है। کراچی جو من ڈسو گھر وزیر کے تمغا ڈنا پیا ون سندھ پبلک سروس کمیشن جو کم رگو پیسہ وٹھی نوکری ڈیئن رہی ویو ہے مخصوص صاحب جو پٹ پاس سندھ جو عوام فیل تھی رہو ہے سندھ پبلک سروس کمیشن جا عملدار سر عام رشوت وٹھی رہا ہیں سندھ کے وسیلن کے کھائیڈ کن کے پکڑ بدرا بچا پی ونے سندھ حکومت جو کوکین کوئن پنکی والے کیس کے مثال بیان جو اعلان سندھ اسمبلی میں گالائی دے سینئر وزیر شجیل انعام احمد منشیات رگو سندھ ان پر سموری دنیا جو مسئلو ہے سندھ کے منشیات کا پاک کیا ویندو اسمبلی ممبرز جی منشیات ٹیسٹ کرائن تے بھی کو اعتراض نہ ہے اپوزیشن لیڈر معاملے تے سیاست کرے رہو ہے پنکی جی فہرست میں شو بز جا ستارہ بھی شامل ہیں گھر وزیر سیال حسن انجار چوتھا سندھ پولیس وفاقی دائرے سے گڈجی پنکی کے گرفتار کیا کیس سے جانچ ہلندڑ ہے معاملے تے نہ گالائے ونے جانچ بعد اسمبلی اجازت دینی تا تالا بھی ظاہر کیا ویندا پنکی کیس کے مثال بنایا ویندو

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल मैं जमीन तू आसमान बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: आप सुन रहे हैं
2: DAFM 88
1: नेटवर्क सिंध की आवाज।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते। अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन

0: फ्रेंडली फार्मूलो डी अवांखे रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप वाइट एज ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: जो शहर बहजो घर सकरंट आई सकरंट जो आवाज
2: GFM 90.8

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: तंगे जदीद मशीन जरिए पेंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हा

ताक़त जो इस्तेमाल नतीजा न ॾींदो ईरान जे एटमी प्रोग्राम समेत समूरनि तकरारनि जो हल मुशावरत सां निकिरणु घुर्जे मसइलनि जो हल तकिड़ो हल अमेरिका ईरान ऐं ॿियनि मुल्कनि जे मफ़ाद में आहे चीनी परॾेही वज़ारत चयो आहे त तकरार जे निबेरे लाइ ॻाल्हियुनि ऐं राब्ते वारो सिलसिलो बि जल्द बहाल थियणु घुर्जे ईरान जंग शुरू ई न थियणु घुर्जे हा जंग जो जारी रहण कंहिं जे बि मफ़ाद में न हूंदो चीन सदाई ॻाल्हियुनि ऐं सिफ़ारती कारी खे ई हथी ॾिनी आहे

0: पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी बलोचिस्तान की 11 तरक्याती मनसूबन जो इफ्तिताह कर छो। बिलावल भुट्टो सरदारी पीपल्स पार्टी सदाई अवाम दोस्त सियासत करण से गड मनसूबा दिना मुल्क में अमीर तोड़ी गरीब लाय सेहत जो एक निजाम होजन घुर्जे। खत्ते समय दुनिया में मुश्किल सबब पाकिस्तान में भी परेशानी है। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी जा सिंध हुकूमत ते संगीन इल्ज़ाम। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो नालो तब्दील करण जो मुतालबो। अली खुर्शीदी चयो त सिंध जे हर खाते में करप्शन आहे, को भी कम पैसन खां सवाइ न थी रहियो आहे। असिस्टेंट कमिश्नर बि मुक़ररी लाइ 3-7 करोड़ ताईं ॾिए थो। सोलर प्रोजेक्ट में वॾी करप्शन थी अवाम खे पुरियो वियो, अरबे रुपियनि जी कणक कुआ खाई वञनि था। वज़ीर चवनि था चोरी न आहे थी। सिंधु दरिया ते तामीर थींदड़ कश्मीर कंदकुट पुल ठहण दौरान ढही रही आहे। कराची जो मन ॾिसो घरू वज़ीर खे। सिंध हुकूमत जो कुकेन क्वीन पिंकी वारे केस के मिसाल बढ़ाने जो ऐलान। सिंध असेंबली में गालाइंदे सीनियर वज़ीर शर्जील लाल वेवंड चयो आहे त मलेशियात रुगो सिंध न पर समूरी दुनिया जो मसलो आहे। सिंध के मलेशियात खां पाक कयो वेंदो। असेंबली मेंबर्स जे मलेशियात टेस्ट कराइण ते भी को एतराज़ नाहे। अपोजिशन लीडर मामले ते सियासत करे रहियो आहे। पिंकी जी फहिरिस्त में शो बिज़नेस सितारा भी शामिल आहिनि। घरू वज़ीर सियाल हसन अंजार चयो त सिंध पुलिस वफ़ाक़ी इदारे सां गॾिजी पिंकी खे।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलण फालिज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह क्लिनिक स्टेशन रोड सकरन। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327 99